हर कोई कहता है कि ईश्वर नजर नहीं आता, लेकिन सच तो यह है कि संकट के समय कोई साथ नहीं देता, तब किसी न किसी रूप में भगवान ही साथ देता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम। भगवत गीता हमें स्वास्थ्य के बारे में भी एक बहुत सुंदर बात बताती है। स्वास्थ्य शब्द का अर्थ क्या है? स्व में स्थित होना। इसीलिए अगर स्वास्थ्य सही से समझना है तो स्व की परिभाषा को समझना आवश्यक है। भगवत गीता हमें बताती है कि जो हमारा शरीर है ये एक समय बाद समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ये शरीर हम नहीं है, ये केवल एक गाड़ी है और इसके ड्राइवर हम हैं जो कि आत्मा है। अर्थात कि हम स्व से समझ सकते हैं कि स्व हम आत्मा के प्रकार हैं। सो भगवत गीता हमें बताती है स्वास्थ्य की सही परिभाषा। स्वास्थ्य अर्थात स्व में स्थित होना। स्व में स्थित होने के लिए हमें स्व को जानना बहुत आवश्यक है। स्व अर्थात मैं। अब ये मैं क्या है? अगर मैं को शरीर माने तो एक दिन ये शरीर समाप्त हो जाएगा। मैं को मन बुद्धि माने तब भी जीवन के समाप्त होने पे ये समाप्त हो जाएंगे। परंतु अगर इस स्व को हम आत्मा माने जो कि कभी जिसका नाश नहीं होता, ऐसी आत्मा सही में स्व है। तो स्व में स्थित होने का अर्थ है कि हम आत्म साक्षात्कार के लिए कार्य करें। अर्थात कि अपने को जीवन के कर्तव्यों के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक चेतना पर भी कार्य करें। इससे हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, तनाव से मुक्त रहेंगे। हरे कृष्णा।

भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए, लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में टटोलते हैं, ये कहना है अज्ञात का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: एक बात पानी से सीखी जा सकती है, छोटी छोटी नदियां शोर मचाती हैं, परंतु महासागर शांत रहता है, ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा सुनो शारदा 90.8 FM पर।

नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सब सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा और काशी है।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.
3: राम राम दोस्त, राम सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं नाचीज हरदिल अजीज गगन, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से जिसका नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल, बिंदास बातें। जनाब, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, अपने दिल की बातें मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो दिल में दबा कर मत रखिएगा, फटाफट एक छोटा सा कॉल कर मुझे बता सकते हैं अपने हालचाल, शहर के हालचाल, पड़ोसियों के हालचाल। नंबर है वही जाना पहचाना, सुना सुनाया, जो अक्सर बारंबार हम आपको बताते रहते हैं। चलिए एक बार पुनः बता 01204060205, अर्थात हिंदी में 120-40-60-205 पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा 90.8fm@sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं और मेल के माध्यम से मेल जोल बढ़ा सकते हैं। ये तो रही संपर्क सूत्र की बात, यानी कि इसके जरिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्या है खास इसके बारे में, मैं आपको थोड़ा सा इशारा कर देता हूँ। जाहिर सी बात है कि कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। अगर आपके पास कुछ हुनर है, उस हुनर को आप आगे लेकर जाना चाहते हैं और अच्छे दोस्त हैं, अच्छे टीचर हैं, तो निश्चित तौर पर सब कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा। ऐसी खास एक टैलेंट मेरे साथ जुड़ने जा रहा है जो कि शारदा यूनिवर्सिटी का है, उसके बारे में बातें करेंगे जरूर, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन न्यूज़ शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। भाई ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको इशारा किया था कि आज मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ स्टूडियो में खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कौन है, कहाँ से है, चलिए ज्यादा आपको इंतजार नहीं कराना चाहूंगा, लेकिन बारम्बार मैं आपसे यही बातें शेयर कर रहा होता हूँ, साझा कर रहा होता हूँ कि अगर आपके पास कोई हुनर है, कुछ आप हमसे कहना चाहते हैं, आपके पास एक अच्छी कला है, आपके पास एक अच्छा टैलेंट है, वो चाहे आप सिंगिंग की बात हो, चाहे वो राइटिंग की बात क्यों ना हो, तो ऐसी हमारे रेडियो को सुनकर, हमारी ख्याति को सुनकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं शारदा यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही प्यारे स्टूडेंट हैं, जिनका नाम है सुमित कुमार। ये सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और GNM का कोर्स कर रहे हैं शारदा यूनिवर्सिटी से। माशाल्लाह पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी है, अच्छा गाते, अच्छे इंसान है। तो चलिए ज्यादा इंतजार नहीं कराते तो बात करते हैं सुमित की। तो सुमित, फाइनली सुनो शारदा 90.8 एफएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच सर।
0: कैसा फील कर रहे हैं, कैसा लग रहा है?
1: सर आई एम वेरी एक्साइटेड, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, नया एक्सपीरियंस है सर।
0: सेम मुझे भी अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करके, क्योंकि ये आपके साथ मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है।
1: जी जी।
0: तो सुमित सबसे पहले आप मुझे बताएं कि शारदा यूनिवर्सिटी के इस प्रांगण में, ये तो रही बात रेडियो एफएम की, चूंकि आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, और शारदा यूनिवर्सिटी में आना कैसे हुआ, यहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ की फैकल्टी कैसी है, कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं उसके बारे में कुछ बताइए, अपने कोर्स के बारे में बताइए, जो उसका मैं नाम देख रहा हूँ GNM कोर्स आप कर रहे हैं, सो प्लीज बताइए।
1: सर सबसे पहले शारदा यूनिवर्सिटी के बारे में बता देता हूँ। ये तो सर एक अलग ही यूनिवर्सिटी है, मतलब इतने बड़े लेवल पे यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे बच्चों को आने का अलग ही क्रेज रहता है। और मेरा जो कोर्स है GNM जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, मैं यहाँ से नर्सिंग कर रहा हूँ, सेकंड ईयर में हूँ। तो यहाँ की जो फैकल्टी मेंबर है बहुत ज्यादा अच्छे हैं, फ्रेंडली नेचर है बिल्कुल, और बहुत सपोर्टिव हैं। जैसे कि मेरी फैकल्टी मैम ने कोई सजेस्ट किया था यहाँ पे आने के लिए।
0: ओह ग्रेट।
1: तो
0: उनका नाम बताइए।
1: सर मेरी मैम, वो माधवी शर्मा मैम है।
0: ओह ग्रेट।
1: यस सर, वो हमें MSN पढ़ाती हैं, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि यहाँ पे जाओ शारदा में। सर शारदा एक मतलब बच्चों के लिए बहुत सपोर्टिव है, एक प्लेटफॉर्म खुद देता है कि बच्चे आगे निकले यहाँ से जाने के लिए।
0: तो आपको कैसा लग रहा है, उन्होंने यहाँ सजेस्ट किया आपको, यहाँ एक मौका मिल गया, हम और आप बात कर पा रहे हैं?
1: सर एक ग्रेट फीलिंग है सर, मेरे लिए बहुत ज्यादा ग्रेट फीलिंग है।
0: ये हमारे लिए भी बहुत एक बड़ा कहते ना कि एक सुखद लम्हा है, इस लम्हे को हम कैद करना चाहते हैं।
1: जी जी।
0: और जो आपकी बातें वो अपने जो लिसनर्स हैं, जो हमारे श्रोता हैं, उन तक हम बातें पहुंचाएंगे जरूर। सुमित यहाँ पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगा, अगर आपके अंदाज में, क्योंकि आप सिंगिंग करते हैं, आपके बारे में, उस टैलेंट के बारे में जानेंगे जरूर, कोई अगर ब्रेक पर जाना चाहे आपके अंदाज में, तो कोई कैसे ब्रेक पर जाएगा?
1: सर ऐसा ब्रेक के लिए, मैं ब्रेक के लिए बना ही नहीं हूँ,
0: ब्रेक के लिए बना ही नहीं है, मतलब लगातार काम करना चाहते हैं,
1: रुकना ही नहीं चाहते, अभी तो सर स्टार्ट ही नहीं किया।
0: चलिए चलिए, खैर मैं उस ब्रेक की बात नहीं कर रहा था, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक हम लेना चाहते हैं जो कि म्यूजिकल ब्रेक है। सो आप कहीं जाएगा मत, मेरे साथ यही जुड़े रहिए, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मेरे साथ हैं शारदा यूनिवर्सिटी का एक टैलेंट है जो कि बहुत अच्छे सिंगर है, सुमित कुमार, उभरते हुए कलाकार है, राइजिंग स्टार इनको हम कह सकते हैं, इनके बारे में जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनू शारदा 90.8 एफएम। मेरे यानी गगन के साथ और प्रोग्राम का नाम है बिंदास सुबह बिंदास बोल बिंदास बातें। खास बात यह कि आज एक शारदा यूनिवर्सिटी का टैलेंट हमारे बीच में है और यही हमारा उद्देश्य है कि शारदा यूनिवर्सिटी का रेडियो स्टेशन आपके लिए है, हम आपके लिए हैं। और अगर आपके पास कोई टैलेंट है, कुछ दिखाना चाहते हैं जमाने को, तो जरूर यहां आ पाइए और आपकी बात हम आपके श्रोताओं तक जरूर पहुंचाएंगे। तो सुमित, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी जी, शुक्रिया सर, शुक्रिया।
0: ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी आपके कॉलेज के एक्सपीरियंस के बारे में, आपके टीचर के बारे में जिन्होंने आपको यहाँ प्रमोट किया कि सुमित आप अच्छा गाते हैं, शारदा यूनिवर्सिटी का अपना एक रेडियो एफएम है, वहां जाकर आप मिलिए। और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम आपसे बात कर पा रहे हैं और आपके जो टैलेंट है उसको हम हमारे लिसनर्स तक हम पहुंचाएंगे। थोड़ा कुछ और बताइए अपने बारे में। अगर मैं आपसे कहूं कि डिटेल में मुझे बताइए कि ये जो शौक है, इसके शौक की शुरुआत कैसे हुई, कहां से हुई, किसने आपको गाइड किया?
1: जी सर, तो सर जब मैं स्कूल टाइम में था, 12th क्लास की बातें हैं, तो एक रफ्तार है हमारे जो रैपर हैं, उनका रियल नेम है दिलेन नायर, तो सर मैं उनको सुनता था। तो वहीं से मेरे को थोड़ा मोटिवेशन आया कि हाँ मैं भी ट्राई कर सकता हूँ इस फील्ड में। तो मैंने स्टार्ट किया, तो सबसे पहले जो मैंने लिखा था वो सर रैप नहीं था, वो एक सॉन्ग था, एक मेन बात जो ये है। तो वहां से मैंने लिखना स्टार्ट किया, वहां से देख के। तो मैंने जब वो एक सॉन्ग कंप्लीट किया तो वहां से मुझे मोटिवेशन आया कि अब मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कुछ। तो सर मैं रफ्तार को जैसे सुनता था, जो मेरे मोटिवेशन में बहुत ज्यादा हेल्प की उन्होंने, तो वहां से मैंने सोचा क्यों ना अब ये जो मैंने सॉन्ग लिखा है ऐसा ही कोई रैप में कन्वर्ट करके देखूं। तो सर वहां से जब मैंने स्टार्ट किया तो सबसे पहले एक उसके बाद रैप बना के देखा, तो जो उन्हीं का था जो रफ्तार ने निकाला था एक बैक बेंचर करके, तो सर उन्हीं का हमने उठाया था वहां से, उनके गाने की 4 लाइन लेके सर मैंने पूरा रैप, एक सबसे पहला जो मेरा रैप था वो मैंने अपना बनाया था। और सबसे सर पहला जो मैंने YouTube पे अपना डाला था वो वही था मेरा भी, जो गाने का नाम था बैक बेंचर।
0: तो रिस्पांस कैसा मिला
1: सर उस गाने पे? अभी तक का सबसे ज्यादा अच्छा रिस्पांस आया है, 32K+ व्यूज जा चुके हैं सर।
0: नाइस,
1: जी
0: नाइस।
1: सर उस गाने पे।
0: जब आप गाना लिखते हैं तो किस सोच के

0: आप गाने को लिखते हैं और फिर आप उसको किसके पास लेकर जाते हैं कि भाई या सर प्लीज आप मुझे गाइड करिए कि मेरा गाना सही लिखा गया है या किसको इसको और कैसे मैं बेहतर बना सकता हूँ?
1: सर मेरे गाने बेसिकली जो अभी तक मैंने किए हैं और मैं कर रहा हूँ ये स्टोरी बेस्ड होते हैं। जैसे बैक बेंचर में मैंने स्कूल लाइफ बताई है, एक दूसरा सॉन्ग मेरा आया था झूठा इश्क, वो मैंने उसमें लव लाइफ बताई थी अपनी कि लव लाइफ कैसे होती है क्या। अब जैसे सर एक है मेरा, उसके बाद मैंने जो निकाला है मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास मेरे सॉन्ग का नाम है, तो सर उसमें मैंने एक स्टोरी बताई है कि मिडिल क्लास इंसान की कैसे
0: कहानी होती है, उसका
1: जी कैसा स्ट्रगल है, तो वो एक है मेरा। तो मतलब मेरे जो थोड़े रैप हैं वो कहानी पे बेस्ड हैं। बाकी अभी मैं ऐसा कर रहा हूँ कि हिप हॉप टाइप भी मैं जैसे जैसे एक्सपीरियंस मिलता जा रहा है तो वैसे वैसे मैं उसको बढ़ाता जा रहा हूँ अपने उसको टैलेंट को। तो आगे भी सर ऐसा है कि अभी अच्छे अच्छे सॉन्ग्स रेडी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मेरी तरफ से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप अच्छा कर रहे हैं क्योंकि अभी तो एक छोटी सी शुरुआत है।
1: जी जी,
0: मंजिल बहुत दूर है, बहुत करीब जरूर आएगी जब आप छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ रहे होंगे, तो निश्चित तौर पर सब कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा। यहाँ पर सुमित एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं हमारे लिसनर्स को, एक छोटा सा ब्रेक और उस पर एक गाना आपके लिए, सो कहीं जाएगा मैं सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

0: हंसते मुस्कुराते इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल, खुशामदीद, खैर मकदम, मैं हूं आजीज हरदिल अजीज गगन, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से जिसका नाम है बिंदास सुबह बिंदास बोल बिंदास बातें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपके पास कोई हुनर है, कोई टैलेंट है जिसको आप जमाने के बीच लेकर जाना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं 01204060205 अर्थात हिंदी में। ये मैंने आपको बता दिया 120 40 60 205, एक बार पुनः इसकी पुनरावृत्ति कर मैंने आपको ये बात बता दी कि इसके माध्यम से आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। 90.8 FM @sharda.ac.in पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं। फिलहाल शारदा यूनिवर्सिटी का एक राइजिंग स्टार है जो कि हमारे बीच है, सुमित कुमार है, जो कि एक अच्छे रैपर है, बहुत अच्छा लिखते हैं, और इसके टैलेंट को इनकी फैमिली ने पहचाना, खुद इन्होंने पहचाना, इनकी टीचर ने पहचाना और इनके दोस्तों ने भी इनके टैलेंट को पहचाना। यही वजह है कि शारदा यूनिवर्सिटी में ये कि शारदा एफएम में ये अपने दोस्तों के साथ यहाँ आए, और मुझे लगा कि जब ऐसे अच्छे दोस्त हैं तो क्यों ना हम उनको ये दिखाएं कि रेडियो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से बातें होती हैं। तो सुमित, दोस्तों के बारे में क्या कहना चाहोगे?
1: सर, दोस्तों के बारे में सर ऐसा है कि मेरे कुछ लिमिटेड ही दोस्त हैं, मैं ज्यादा दोस्ती नहीं रखता हूं। और सर जो जितने भी हैं वो सर इतने अच्छे हैं कि बहुत सपोर्टिव हैं मेरे को लेके, मेरे मतलब वो ना सिर्फ इसमें म्यूजिकल में, मेरे को एज अ फ्रेंड वो अपने करियर में भी, जैसे मैं यहाँ पे नर्सिंग कर रहा हूँ तो वो उस फील्ड में भी मेरे को हेल्प करते हैं। तो वो ऑल ओवर वो जो मेरे फ्रेंड है वो बहुत ज्यादा मोटिवेट करते रहते हैं मेरे को हर टाइम टू टाइम, पढ़ाई में भी लेके और गाने में भी लेके। और
0: वेरी गुड। लाइफ की क्या नाम है दोनों दोस्तों के?
1: सर एक मोलश्री है सर, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, जो अपने साथ में अभी आई है हमारे।
0: जी जी जी।
1: और सर एक प्रथम है।
0: प्रथम है। चलिए, इनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं कहूंगा कि ये याराना आपका बना रहे, दोस्ती आपकी बनी रहे। तो सुमित, अब आते हैं कम टू द पॉइंट, यानी कि उसी मुद्दे पर आते हैं जिसके बारे में हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपके इस टैलेंट के बारे में जाना कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से आपने लिखना शुरू किया, कौन आपके आइडियल हैं जिनको आप मानते हैं। अब बात आती है फैमिली की, फैमिली का यहाँ मैंने जिक्र किया, फैमिली में किसने आपको सपोर्ट किया?
1: सर सपोर्ट सबसे पहले जो मेरे को फैमिली ने किया वो मेरी सिस्टर थी और ब्रदर थे।
0: क्योंकि आपसे बड़े हैं छोटे?
1: हाँ सर, वो सबसे बड़े हैं, मतलब मैं सबसे छोटा हूँ अपनी फैमिली में, सबसे बड़ी मेरी सिस्टर है और उसके बाद मेरे ब्रदर, उसके बाद मैं।
0: तो वो क्या करते हैं दोनों?
1: सर मेरी जो सिस्टर है वो नर्सिंग ऑफिसर है, तो वहीं से उन्होंने मेरे को यहाँ पे नर्सिंग में डाल दिया।
0: ग्रेट, नाइस।
1: तो उसके बाद सर मेरे जो ब्रदर हैं वो बैंक में मैनेजर हैं।
0: हाँ, उन्होंने बैंक में नहीं डाला?
1: नहीं सर, उन्होंने बैंक में नहीं डाला।
0: ओके, तो उन्होंने आपके टैलेंट को पहचाना, उन्होंने आपको मोटिवेट किया कि आप अच्छा करो, लिखो, आगे बढ़ो।
1: यस सर।
0: अच्छा, मम्मी पापा की अगर मैं बात जानूं तो उनकी तरफ से कैसा रिस्पॉन्स रहा?
1: सर स्टार्टिंग में तो मम्मी को मतलब इतनी नॉलेज है नहीं इस चीज के बारे में, तब मम्मी को जब मैंने दिखाया अपना गाना डाला तो मम्मी को खूब पसंद आया, तो मम्मी ने सपोर्ट किया। तो थोड़ा पापा हैं पीछे, मतलब डायरेक्टली तो सपोर्ट नहीं करते, इनडायरेक्टली वो कर रहे हैं।
0: हाँ भाई। तो पापा चाहते हैं कि कुछ बन जाओ,
1: जी बन जाए
0: और अच्छी तरीके से अपने करियर को स्थापित कर लो, खूब रुपया पैसा कमाओ।
1: जी सर।
0: लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इस फील्ड में रुपया पैसा नहीं है, खूब इज्जत है, खूब सम्मान है जब आप स्थापित हो जाते हैं।
1: जी सर।
0: तो सुमित, यहाँ पर मैं एक ब्रेक जरूर लूंगा, लेकिन ब्रेक से पहले मैं ये भी जानना चाहूंगा कि मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आप जिम जाते हैं, आपने अपने आप को मेंटेन करके रखा है, तो ये शौक इसको और उसको कैसे बराबर मेंटेन करते हुए आप आगे बढ़ते हैं?
1: सर जैसे ये करियर ऐसा है, फील्ड ऐसी है कि इसमें सर पर्सनैलिटी भी काम आती है एज अ मॉडल, जैसे हमें शूटिंग करनी होती है, शूट करना होता है, तो अपनी पर्सनैलिटी मेंटेन करने के लिए तो सर मैं जिम काफी साल का एक्सपीरियंस हो गया मेरे को, 5-6 साल हो गए हैं
0: तब से जिम कर रहे हैं।
1: जी जी, जिम कर रहा हूँ मैं, तो काफी ट्रांसफॉर्मेशन भी की मैंने इस चीज को लेकर फील्ड के अकॉर्डिंग।
0: अच्छा, नाइस। अच्छा, खान पान का बड़ा मैटर रखा जाता है, योग का भी बहुत ध्यान रखा जाता है, अनुशासित होना भी बहुत जरूरी है,
1: डिसिप्लिन डाइट।
0: हाँ, तो उसके बारे में बताइए कि किस तरीके से आप एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि लोग तो अब बहुत आलसी हो गए हैं, खाने पीने का ध्यान नहीं रखते और उल्टा सीधा खा रहे होते हैं, नींद वो पूरी ले रहे होते हैं, मतलब आलसी भी हो गए थे, नींद लेना बहुत जरूरी है। तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे जो लोग हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हैं?
1: सर आज की डेट में तो सर हेल्थ इश्यूज बहुत आ रहे हैं, एज अ मैं जैसे नर्सिंग ऑफिसर है, हमें हॉस्पिटल में जो ड्यूटी लगती है तो लोग को बहुत देखने को मिलता है, जैसे जंक फूड बहुत खाते हैं उन्हें, तो एब्डोमिन इन्फेक्शन काफी ज्यादा होने लगता है। तो आज की डेट में सर डाइट बहुत ज्यादा मैटर करती है, और सर मेरे लिए थोड़ा हार्ड वर्क हो जाता है क्योंकि सर क्लिनिकल्स में ड्यूटी वगैरह होती है, फिर उसके बाद सर असाइनमेंट्स होते हैं, उसके बाद सर जिम, उसके बाद सर डाइट, और एक सर हॉस्टल का खाना, सर सबको पता है हॉस्टल लाइफ है।
0: तो आप यहाँ रह रहे हैं?
1: जी हॉस्टल में रह रहा हूँ सर मैं। तो हॉस्टल में सर थोड़ी डाइट,
0: मैं एक बात कहना चाहूंगा यार, ये अक्सर बात मुझे सुनने को समझने को मिलती है, हॉस्टल का खाना देखो यार इतना बुरा नहीं होता, बिकॉज क्योंकि हर एक सिस्टम है, जैसे सपोज करिए कि हॉस्टल के जो देख रेख के केयर टेकर जिन्हें आप कहें, वार्डन जिनको आप कहें, वार्डन के ऊपर भी एक कमेटी होती है, उनके ऊपर एक कमेटी होती है, और कहा जाता है कि अन्य के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि खाना ऑब्वियसली बहुत अच्छा मिल रहा होता है, लेकिन हाँ मैं ये समझ सकता हूँ कि माँ का प्यार अलग है भैया,
1: घर वाला स्वाद नहीं है,
0: वो सीन अलग हो सकता है। तो लेकिन दोस्त सुमित का कहना यही है कि अच्छा खाइए, अच्छा अपनी सेहत का ख्याल रखिए, एक्सरसाइज करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी सेहत में चार चांद लगते चले जाएंगे। और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात मेंशन की कि जंक फूड जिसको हम कहते हैं कि फास्ट फूड जो कि बहुत जल्दी तैयार होता है, बहुत जल्दी आपकी सेहत को वो नुकसान भी पहुंचा रहा होता है। तो फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद मैं आपको मिलूंगा, यहीं कहीं जाएगा मैं, सुनते रहिए। मेरे साथ जुड़े हुए हैं सुमित कुमार जो कि शारदा यूनिवर्सिटी का नर्सिंग डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, जीएनएम का कोर्स कर रहे हैं, बहुत अच्छा ये गाना गाते हैं, बहुत अच्छे रैपर हैं, और इनके गाने के बारे में जरूर हम जानेंगे। तो सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। और कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए और छोटे छोटे कदमों से आप निश्चित तौर पर आप अपनी मंजिल को पा ही लेंगे। जी हाँ, एक ऐसा ही उदाहरण मेरे सामने जुड़ा हुआ है। सुमित कुमार हैं, जो कि शारदा यूनिवर्सिटी के नर्सिंग डिपार्टमेंट से आते हैं, सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, GNM का कोर्स कर रहे हैं। और इनकी जो शुरुआत रही, घर में एक नर्सिंग ऑफिसर भी हैं जो कि इनकी सिस्टर हैं, उन्होंने इनको प्रेरित किया। और वाकई शारदा विश्वविद्यालय में आकर कहते ना कि वेयर आर यू द वर्ल्ड इज हियर। जब आप एक यहाँ आएंगे, एक बार विजिट करेंगे, तो सुमित हम अपनी टैगलाइन बनाकर रेडियो पर प्रचारित करते हैं, प्रसारित करते हैं कि जब आप एक बार यहाँ आएंगे तो आप यहीं कर होके रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ का माहौल, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की पढ़ाई, प्लेसमेंट, बहुत सारी चीजें।
1: जी,
0: तो सुमित, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका कोई एक प्रोफेशनल नेम है या प्रोफेशनल कोई एक यूट्यूब है जिस पर आपकी वीडियोस होती हैं, लोग आपसे जुड़ सकें, आपसे बात कर सकें?
1: जी सर, मैं बताता हूँ, मेरा जो प्रोफेशनल नेम है लेविन सुमित है। लेविन सर जो इंद्र जी के वेपन है, इंद्र जी का जो वेपन है उसको

0: यकीन करता हूँ कि मेरा नाम गगन गौतम है। फर्स्ट नेम भी बहुत अच्छा है और सेकंड नेम भी मेरा माशाल्लाह बहुत प्यारा है, गौतम ऋषि के नाम पर हम गौतम है। इस तरीके से मुझे लगता है कि अपनी एक पहचान को बरकरार रखना, उसके साथ आगे चलना, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। सुमित, अगर फाइनली मैं आपसे कोई एक बहुत ही खूबसूरत गाना या यू कहें कि रैप सुनना चाहूँ, तो कौन सा आप हमारे लिसनर्स को रैप सुनाना चाहेंगे?
1: सर मैं 4 लाइन सुनाना चाहूंगा।
0: नहीं, तुम 8 सुनाओ बाबा, टाइम तुम्हारा है, बोलो।
1: जी सर, मैं अभी जो मैंने नया रिसेंटली सॉन्ग निकाला है, बम भोले, तो भोले बाबा पे मैंने कुछ सॉन्ग बनाया, तो वो उसकी लाइनें बताना चाहूंगा। भोले का रंग चढ़ा भंग, रगड़ भंग पिया मस्त जिया, भोले का फैन हूँ मैं, शिव का कैर हूँ मैं, विशिला जैर हूँ मैं, छोटा पत्थर तू पूरा कैलाश हूँ मैं, भोले तलाश में घूमू मैं तो तेरी चारों धाम में, मिलाना तेरे जैसा कोई मुझे सारे संसार में, दुश्मन का पे भोले सारे तेरे नाम से, काम बने मेरे सारे तेरे नाम से, बम बोले बोले तो बम बोले।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे बोल, बहुत अच्छी शुरुआत, बहुत अच्छा एक आपने ताना बाना बुनाया, तो भोले बाबा की कृपा आपके ऊपर बनी है, बनी रहे, मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: शुक्रिया।
0: फाइनली कुछ अगर आप कहना चाहते हैं कि उन लोगों के लिए जो इस फील्ड में आ रहे हैं, अपने करियर को आगे लेकर जाना चाहते हैं, एक अच्छे रैपर बनना चाहते हैं, क्या संदेश होगा?
1: सर सबसे पहली बात है कि खुद के अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए ये चीज करने की, क्योंकि सर कुछ सोसाइटी है कि वो इस चीज में थोड़ा सर जब स्टार्टिंग होती है, हम जैसे छोटे जैसे आर्टिस्ट हैं उनकी जब स्टार्टिंग होती है तो सर सोसाइटी थोड़ा बहुत रोक टोक करती है कि इस चीज में कुछ नहीं रखा, तो सर खुद से ना सर सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है इस चीज में, तो सर किसी की ना सुन के अपने दिल की करे, अपने मन की करे, जो टैलेंट है सर उसको आगे लेके जाए और कोशिश करते रहे सर, एक दिन अपने सपने पूरे जरूर होते हैं।
0: बेशक बेशक जरूर सपने पूरे होते हैं, लेकिन उन सपनों के सामने सच बात तो ये भी कि दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती हैं, और इसलिए कहा जाता है कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, यानी कि ईश्वर खुदा माँ बाप की ब्लेसिंग्स काम आती चली जाती हैं, और निश्चित तौर पर फिर वो एक दिन आपका आता है जब आप अपनी मंजिल को पा लेते हैं, अपने सपने को साकार कर लेते हैं। तो सुमित मुझसे बात करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा?
1: सर मेरे को बात करके सर आपसे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। सर ये आपसे एक मैं चीज सीखा हूँ यहाँ पे आके, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे करूँ मैं सर?
0: थैंक यू। नहीं नहीं आप अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ बातें होंगी तो जरूर मैं फिर आपके साथ साझा करूंगा। ये प्रोग्राम, ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा? 01204060205 अर्थात 120-40-60-205 पर आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। इसके अलावा 90.8 FM @sharda.ac.in पर भी आप हमें मेल कर बता सकते हैं। फिलहाल वक्त का इशारा हो चुका है, वक्त का इशारा जब होता है तो मुझे लेनी होती है अनुमति। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, न टेंशन लेने की जरूरत, न किसी को टेंशन देने की जरूरत। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए, और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। टाटा बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
3: राम राम दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ मंडे टू सैटरडे 7-9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ। और हमेशा ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से यही दुआ, यही प्रार्थना करता हूं कि आपका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में 9:05 हो चुके हैं, 16 तारीख है, बोले तो सैटरडे का दिन। इस ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल योर सुरु शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। और स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त बज चुके 9:10 हो चुके हैं। 16 तारीख है, 16 तारीख बोले तो गर्मी का दिन। 18 से लेकर 19 मई को धूल भरी गर्म हवाएं अर्थात लू चलने की संभावना है। खबरें यहां तक आ रही कि दिल्ली NCR में सूरज के तीखे तेवरों के साथ साथ 44 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। और 18 से 19 जैसे कि दिन तारीख मैंने आपको बता दिया, तो इस दौरान आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, लापरवाही मत बरतिए। गर्मी बढ़ रही है, ऐसे में पानी भरपूर पीजिएगा, डॉक्टर से सलाह लेते रहिएगा। और एयर क्वालिटी इंडेक्स भी अगर गड़बड़ा रहा है तो निश्चित तौर पर अपनी सेहत का ख्याल रखना तो बनता है ना। पानी की कमी मत होने दीजिएगा। जब भी घर से बाहर निकलें तो अपने तन बदन को ढककर निकलेगा, सर के ऊपर छाते का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी महसूस होती है तो खुद से डॉक्टर मत बनेगा। ऐसी गर्मी में जब महंगाई और बढ़ जाती है तो दिक्कतें और भी ज्यादा होती हैं। कल मैंने डिटेल में बातें की थी कि हम तो यही चाहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। लेकिन कहीं कहीं लोग कहते हैं, अरे मेरे घर में बम थोड़ी गिरा है, मेरे पड़ोसी के घर में थोड़ी बम गिरा है बोंदू। लेकिन जब ऐसे विश्व में युद्ध के हालात होते हैं तो निश्चित तौर पर आखिर छोर पे जो इंसान है उस पे भी फर्क पड़ता है। जैसे कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, CNG के भी दाम बढ़े हैं, हो सकता है इससे महंगाई पे भी फर्क पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर हम यही प्रार्थना करते हैं कि कोई संकट ना हो, विश्व पर चैन हो, अमन हो, सुकून हो। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल योर शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। भारत के प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर हैं, समझौते हो रहे हैं, कुछ बातें सकारात्मक निकलकर हमारे सामने आ रही है। कच्चे तेल के बारे में जाने की जरूर, एक खुशखबरी है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा जरूर। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल योर शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: परिवार नियोजन के बारे में फिल्म अभिनेता सचिन क्या कहते हैं, जरा सुने।
2: परिवार उतना ही हो जिसको आप सही शिक्षा दे सके, बेहतर जीवन दे सके और स्वस्थ रख सके। परिवार छोटा होगा, बच्चों के जन्म में अंतर होगा तो माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। आज तो अनेक उपाय भी है, कॉन्डोम है, कॉपर टी है, गोली है। डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह से ही कोई भी एक उपाय चुन लीजिए। स्वस्थ भारत की शुरुआत होती है स्वस्थ परिवार से, आपसे।
1: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।
3: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
4: Yeah. Gagan Kokri. Fateh.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। यदि आपको दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: बिल्कुल आपने सही सुना कि टीबी हारेगा, देश जीतेगा। हम भी यही चाहते हैं कि हर कोई निरोग रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, उसकी जो काया है वो निरोगी काया बनकर रहे। इसके लिए जरूरी है कि हर रोज एक्सरसाइज करिए, तन मन की शुद्धि का ख्याल रखिए, नींद भरपूर लीजिए, तनाव से अपने आप को दूर रखिए और बस करीब रहिए सुनो शारदा 90.8 FM के विद भी मेरे यानी गगन के साथ। भाई मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूँ आपके साथ। गुड मॉर्निंग। सुरक्षित चलेगा, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचेगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आपके बच्चे आपका घर पर इंतजार करते हैं, ऑफिस में आपके बच्चे आपका इंतजार करते हैं। मतलब जैसे अध्यापक कब आएंगे, हम बच्चे ना तो टीचर के बारे में पूछते रहते हैं बच्चे। चलिए, अक्सर हमने देखा है कि छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े ऑन रोड हो जाते हैं, तो प्लीज उससे अपने आप को बचा कर रखिएगा। बात करते हैं कि मौजूदा हालात जो है इस वक्त देश में, विदेश में, उसका जो फर्क है आम जन पर, देश के किसी कोने में या कहते ना कि विश्व के किसी कोने में एक आखिर छोर पर अगर कोई व्यक्ति है तो उस पर भी फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, सीएनजी के दाम बढ़े और अमूल ने भी 2 रुपये लीटर दाम बढ़ा दिए, मदर डेयरी ने भी दाम बढ़ा दिए, सिलेंडर वगैरह। मुझे तो समोसों की बड़ी चिंता हो रही है, समोसे में दाम मत बढ़ाना, ज्यादा निखा ना दिक्कत हो सकती है। हाँ, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी गए और कच्चा तेल लेकर आ रहे। हाँ बिल्कुल सही कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश गए और उन्होंने अबू धाबी दौरे के दौरान भारत और यूए के बीच बड़ी ऊर्जा साझेदारी पर सहमति बनी है और यूए अब भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में 30 मिलियन बैरल तक कच्चा तेल स्टोर करेगा। इस बात के लिए लख लख बधाइयां, बहुत बहुत दिल दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे लगता है कि हर संकट में हम सबको समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है। ऐसे समय में कहीं ना कहीं अफवाहें भी जन्म ले लेती हैं, तो हमारा फर्ज बनता है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अफवाहों से दूर रखें और लोगों को भी सावधान करें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल यू सुरशादा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। गुड मॉर्निंग।

0: सुनो शारदा 90.8 एफएम और स्मार्ट खड़े हैं रणभूमि में लेकर जागरूकता की तीर कमान, जो ग्रेटर नोएडा से मिटा देंगे टीबी का नामो निशान। टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है। प्रत्येक टीबी के मरीज को उपचार के दौरान सरकार द्वारा 1,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं, जिसके लिए मरीज का एक बैंक अकाउंट नंबर और आधार कार्ड होना जरूरी है। स्वास्थ्य सही लाभ कही, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: बिल्कुल आपने सही सुना कि अधिक जानकारी के लिए विजिट करें, अर्थात दौरा करें, भ्रमण करें शारदा विश्वविद्यालय के आंगन में, प्रांगण में, SSMFE डिपार्टमेंट में, यानी कि शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। जब आप यहां आएंगे, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में जान सकते हैं, एक्टिविटी के बारे में जान सकते हैं, पढ़ने पढ़ाने के माहौल के बारे में जान सकते हैं, प्लेसमेंट के बारे में जान सकते हैं कि यहां से स्टूडेंट्स निकलकर कहां कहां झंडे गाड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर भविष्य उज्जवल है, क्योंकि शारदा विश्वविद्यालय का खुद का सामुदायिक रेडियो स्टेशन है, तो यहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। शारदा टीवी भी हमारे पास है, रिजल्ट आउट हो चुके हैं, तो आप आइएगा जरूर। चलिए, हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ना चाहते हैं। जिंदगी में हर कोई तरक्की बरकत करना चाहता है, लेकिन सच बात तो ये कि दिक्कतें परेशानियां भी आती हैं, लेकिन उससे हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। रिजल्ट आउट हो चुके हैं, कहीं कहीं परसेंटेज ऊपर नीचे रही है जरूर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को चोट पहुंचा लें, अपने शरीर को नुकसान पहुंचा लें। कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। आजकल जब ये सारी चीजें वायरल होती हैं, तो लोग अपने बच्चे को मोटिवेट करते हैं, बच्चे कोई बात नहीं, और अगली बार आप मेहनत करेंगे तो अच्छे अंक और आप प्राप्त करेंगे। हाँ, पुराने समय में तो लटकुटते थे। हाँ, पीछे समय की अगर हम बात करें तो थोड़ी सी नाराजगी हुआ करती थी, और उस समय की जब हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन आज का समय यह है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो भी बनोगे नवाब, यानी कि खेलो इंडिया के तहत आप अपने आप को आगे लेकर जा सकते हैं। और जब आप स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं, तो निश्चित तौर पर जब आप किसी स्कूल कॉलेज में दाखिला लेते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो स्पोर्ट कोटे के तहत आपको डिस्काउंट यानी कि वरीयता दी जाती है और फीस में थोड़ा रियायत मिल जाती है।
2: टीबी हो जाने पर 6 से 8 महीने का उपचार
1: अपना ख्याल रखिए होता
2: है, लेकिन अगर इलाज बीच में रोक दिया तो टीबी बिगड़ सकता है और ड्रग रेसिस्टेंट टीबी बन सकता है। TRTB तब होता है जब टीबी की कुछ दवा असर करना बंद कर दे। TRTB का इलाज कठिन और लंबा है, लेकिन मुमकिन है। आधुनिक जांच और इलाज सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त उपलब्ध है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
3: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
4: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: इस ब्यूटीफुल ट्रैक को सुनने के बाद एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल, खुशामदीद, खैर मकदम, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन गिजार। 9:45 हो चुके हैं, 16 तारीख है, माहौल बदल रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो जिसकी वजह से होता क्या है कि दिक्कतें परेशानियां बहुत ज्यादा हमारे सामने आ रही हैं। तो आने वाले समय में हमने सुना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लोबल वार्मिंग तेज हो रही है और ऐसे में शक्तिशाली अल नीनो आने से दोनों के प्रभाव बढ़ जाएंगे, यानी कि सूखा, बाढ़ और भी कहीं कहीं दिक्कतें परेशानियां आ सकती हैं। तो आने वाले समय के लिए हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। वैज्ञानिकों ने ये चेतावनी दी है, उन्होंने अलर्ट किया है कि 2026 में एक बहुत मजबूत अल नीनो बनने वाला है और जो कि इतिहास के सबसे खतरनाक अल नीनो में से एक होगा और दुनिया भर में बाढ़, सूखा और रिकॉर्ड गर्मी का खतरा बढ़ जाएगा। प्लीज अलर्ट रहिए, अपने पर्यावरण का ख्याल रखिए। हम वाकई बहुत मतलबी हैं। जहां हमें एक अच्छा पेड़ मिलता है हम वहां गाड़ी पार्क कर देते हैं, जहां फूल बगीचा मिलता है वहां से हम फूल तोड़ लेते हैं। सोचिए कि क्या आपने कभी कोई पौधा लगाया जो समाज को लाभान्वित करे? नहीं ना। तो अगर हम छोटे छोटे कदमों से समाज के लिए कुछ अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे, तो निश्चित तौर पर एक क्रांति ला सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम अपने बारे में सोचें कि मुझे एम्स में फैसिलिटी मिल जाए, मुझे रोड्स बहुत अच्छे मिल जाएं, लेकिन जब मौका मिलता है मैं अपनी शॉप के आगे अतिक्रमण कर लेता हूं, या जब भी मुझे कोई मौका मिलता है मैं कुछ और गुना अपराध कर लेता हूं जो कि समाज के हित में नहीं है। सोचना पड़ेगा आपको, मुझे, हम सबको।
1: रुलाओगे बेटा गगन, कितनी अच्छी सामाजिक बातें कर रहे हो, बहुत दूर तक जाओगे।
0: कहाँ?
1: उज्बेकिस्तान, देयर इज अनदर वन शाखा फ्रॉम शारदा विश्वविद्यालय। मैं तुम्हारा प्रमोशन करा के मानूंगा, नहीं मैं तुम्हारे पास रहूंगा, ये दोनों चलेंगे।
0: गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ, ब्यूटीफुल ट्रैक सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 एफएम पर। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन।

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

ब्यूटीफुल ट्रैक को सुनने के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। वक्त हाथ से रेत की माफी फिसलता चला जाता है, इसलिए वक्त पर सारे काम करेंगे तो कहीं कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। फिलहाल मेरा वक्त आ गया है यानी कि आपसे अनुमति ले लेने का, फिर यानी कि मंडे को होगी आपसे मुलाकात। मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव मस्ती कमाल धमाल के साथ मैं रहता हूँ आपके साथ। फिर गगन उसके बाद क्या करते हो? हम बैठ के खाते पैसे बढ़वाऊंगा मैं तुम्हारी लोग अक्सर ऐसा सवाल करते हैं कि उसके बाद करते क्या हो भाई? प्रोग्रामिंग होती है, रिसर्च वर्क होता है, सॉन्ग पर काम होता है, प्लानिंग पर काम हो रहा होता है, इंटरव्यू लाइंड अप होते हैं, इंटरव्यू कैसे करना है, कौन गेस्ट आने वाला है, वगैरह वगैरह। हाय रब्बा, मैं तो समझ रहा तुम्हें तो हल्के में ले रहा था मैं तो। अब पैसे बढ़ने चाहिए? पैसे नहीं, मैं तुम्हें रुपयों में तोल दूंगा मेरे लाल मेरे बीले, अब तक तुम कहाँ थे। चलिए हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ते रहिए। फिलहाल जब आप कोशिश करते हैं तो निश्चित तौर पर उसका इनाम इकराम आपको एक ना एक दिन मिलता ही मिलता है। मैं बात कर रहा हूँ धुरंधर फिल्म का जिक्र हो रहा है। जैसे नेटफ्लिक्स पर ये रिलीज हुई है, पाकिस्तान में धुरंधर 2 आते ही नेटफ्लिक्स क्रैश हो गया और वहाँ की वीडियोज भी वायरल हो रहे हैं। यानी कि जो आदित्य धर ने काम किया, जो उनकी टीम ने काम किया, निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। और बहुत सारी चीज़ें उजागर हुई, पहले तो थी ही हम सबके सामने, लेकिन इस फिल्म की वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई। क्यों ना इस फिल्म का यानी कि फर्स्ट फिल्म का एक गाना सुना जाए जो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, और इस गाने के साथ मैं अब आपसे फाइनली अनुमति ले रहा हूँ। मंडे को होगी आपसे मुलाकात। 5 दिसंबर 2025 को धुरंधर फिल्म फर्स्ट रिलीज हुई थी और सिमरन चौधरी की आवाज़, लेबल है सारेगामा, है ना? ब्यूटीफुल ट्रैक ऑल यू सुरु शारदा 90.8 एफएम। शाश्वत सचदेव का म्यूजिक सिर्फ और सिर्फ सुरु शारदा 90.8 एफएम पर। चाहे तो वॉल्यूम अप कर सकते हैं, लेकिन लेकिन लेकिन गड्डी पूरे होश आवाज में चलाएगा। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन विद मी मेरे यानी गगन के साथ। आए हाय आए।

0: स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर

नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन आरजिंग एडिटिंग प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है, तो फिर कहीं देर ना हो जाए। कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। श्लोक का अर्थ है कि हे ईश्वर हे पिता परमेश्वर हमारी जो काया है उसको आप निरोग रखें, हम सब स्वस्थ रहें और हमारी काया तंदुरुस्त रहे, आप हमें ऐसा आशीष दें वर दें। राम राम दोस्त सलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं गगन आपके साथ। दोस्तों आज का जो विषय है थोड़ा अलग है और सच कहूं तो थोड़ा डराने वाला भी है, लेकिन जरूरी है कि हम इस पर खुलकर बात करें। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारे ही पास के गांव में एक बच्चा तेज बुखार से पीड़ित हुआ। घर वालों ने सोचा साधारण बुखार है, दो दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन वो बुखार डेंगू निकला और जब तक अस्पताल ले जाया गया बहुत देर हो चुकी थी। साथियों ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी अपनी टीकन देवी, जो सालों से गांव-गांव जाकर लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक कर रही हैं।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी टीकन देवी। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। हम स्मार्ट के साथ मिलकर एक कार्यक्रम चला रहे हैं सेहत सही लाभ कही। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं एक बार फिर स्टूडियो में मौजूद हूं और मेरे साथ हैं आजे साहब, जो कि हमारे श्रोताओं को समय समय पर जागरूक करते रहते हैं। सबसे पहले मैं अपने श्रोताओं को धन्यवाद दूंगी जो हमारे को इतने प्रेम के साथ सुनते हैं, समझते हैं और हमारी दी गई जानकारी को अपने जीवन में उतारते हैं। लेकिन आजे साहब, जो आपने कहानी बताई ना वो बहुत दुखद है, लेकिन सच्चाई भी यह है कि डेंगू को हम अक्सर हल्के में ले लेते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है।
0: भाभी सबसे पहले तो ये बताइए, ये डेंगू आखिर है क्या? लोग इसे हड्डी तोड़ बुखार क्यों कहते हैं? सच कहूं तो नाम ही इतना डरावना है कि सुनते ही घबराहट होने लगती है।
1: देखिए, जब आपने इस बीमारी के बारे में बात की है तो लोगों को इसके बारे में काफी भ्रांतियां होती हैं, लेकिन डेंगू एक वायरल बीमारी है जो एक खास तरीके की मच्छर, जिसे हम एडीज मच्छर भी कहते हैं, उसके काटने से फैलती है। इसे हड्डी तोड़ बुखार इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये बीमारी होती है तो शरीर में इतना तेज दर्द होता है कि इंसान को ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी हड्डियां टूट रही हों। हाथ पैर जोड़ों और पीठ में ऐसा दर्द होता है कि उठना बैठना भी मुश्किल हो जाता है। और सबसे खास बात यह है कि मच्छर गंदगी से नहीं बल्कि साफ पानी में पनपता है, जैसे कूलर में जमा पानी, बाल्टी, गमले, पुराने टायर या छत पर जमा पानी। इसलिए लोग अक्सर इसे हल्के में ले लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि साफ घर में कोई खतरा नहीं होगा।
0: मतलब गंदगी नहीं बल्कि साफ पानी भी खतरा बन सकता है। दोस्तों ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया हमारी सोच से।
1: बिल्कुल, मैं अपने श्रोताओं से कहना चाहूंगी कि बेशक आपका घर साफ है, लेकिन अगर कहीं पानी जमा है, इवन एक छोटे से ढक्कन में भी हो, तो मच्छर वहां अंडे दे सकता है। इसलिए सिर्फ साफ सफाई ही काफी नहीं, पानी का जमा ना होना भी उससे ज्यादा जरूरी है।
0: भाभी ये बात तो सच में सोचने वाली है, लेकिन अब ये बताइए कि इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे पहचाने कि ये साधारण बुखार नहीं बल्कि डेंगू हो सकता है?
1: बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण सवाल किया। देखिए, डेंगू के लक्षण शुरुआत में आम बुखार जैसे ही होते हैं, जैसे अचानक तेज बुखार आना, सिर दर्द होना, आंखों के पीछे दर्द महसूस होना, पूरे शरीर में दर्द होना, कमजोरी, उल्टी या मतली आना, लेकिन कई बार शरीर पर लाल लाल चकत्ते भी दिखाई देते हैं। इसी वजह से लोग इसे साधारण वायरल बुखार समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन श्रोताओं, असली खतरा तभी शुरू होता है जब बुखार उतरने के बाद भी शरीर ठीक नहीं होता। मरीज को बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है, पेट में दर्द, बार बार उल्टी, सांसों का तेज चलना, नाक और मसूड़ों से खून आना, तो एक ऐसी बीमारी के संकेत होते हैं जिसे लेकर हमें डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए और उसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए।
0: मतलब बुखार उतरने के बाद भी खतरा खत्म नहीं होता? हम तो हमेशा यही सोचते हैं टीकन भाभी कि बुखार गया मतलब बीमारी खत्म।
1: हाँ ये तो हमारी सोच है ना, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। कई लोग बड़ी लापरवाही कर देते हैं, वे सोचते हैं अब तो सब ठीक है, लेकिन असल में शरीर अंदर से कमजोर हो रहा होता है। डेंगू में कई बार बुखार उतरने के बाद भी हालत बिगड़ती है, इसलिए उसे समय समय पर सावधानी के साथ चेक कराते रहना चाहिए, और इसमें सावधानी ही सबसे बड़ी जरूरत है।
0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही। साथियों, अब मैं आपको एक सच्चाई के बहुत करीब एक कहानी सुनाना चाहता हूं। एक ऐसी कहानी जो हमें डराती भी है लेकिन उससे कहीं ज्यादा सिखाती है। ये कहानी है हमारे ही जैसे एक छोटे से गांव की, और उस गांव में रहने वाले 12 साल के बच्चे सोनू की। गर्मियों के बाद बारिश का मौसम शुरू हुआ था। गांव में हर जगह पानी जमा होने लगा था, कहीं कूलर में, कहीं पुराने टायरों में, तो कहीं छत के कोनों में। सोनू को खेलना बहुत पसंद था और वो रोज अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलता था। एक दिन सोनू घर आया तो उसे हल्का बुखार था। उसकी मां ने सोचा शायद धूप में ज्यादा खेलने की वजह से ये हो गया होगा। उन्होंने उसे आराम करने को कहा और घर का ही इलाज शुरू किया टीकन भाभी। लेकिन अगले दिन बुखार और तेज हो गया। सोनू ने सिर दर्द और बदन दर्द की शिकायत भी की। शुरुआत में परिवार ने इसे साधारण बुखार समझा, लेकिन सोनू की बड़ी बहन जो स्कूल में स्वास्थ्य से जुड़ी बातें सीखती थी, उसने तुरंत ध्यान दिया। उसे याद आया कि गांव में कुछ दिन पहले ही आशा दीदी ने डेंगू के बारे में बताया था कि तेज बुखार, आंखों के पीछे दर्द और बदन दर्द इसके लक्षण हो सकते हैं। उसने अपने माता पिता से कहा इसे हल्के में मत लो, हमें तुरंत अस्पताल चलना चाहिए। शुरू में परिवार थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उन्होंने बहन की बात मान ली और सोनू को तुरंत पास के स्वास्थ्य केंद्र ले गए। डॉक्टर ने जांच की और कुछ टेस्ट कराने को कहा। रिपोर्ट आई तो पता चला कि सोनू को डेंगू है। एक पल के लिए पूरा परिवार घबरा गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें समझाया घबराने की जरूरत नहीं है, आपने समय पर कदम उठाया, यही सबसे बड़ी बात है। डॉक्टर ने सोनू को भर्ती कर लिया, उसे आराम कराया गया। शरीर में पानी की कमी न हो इसके लिए उसे लगातार तरल पदार्थ दिए गए। पानी, ORS, नारियल पानी, बुखार के लिए सही दवाइयां दी गई और उसकी हालत पर लगातार नजर रखी गई। सोनू की मां हर समय उसके पास बैठी रहती थी, उसे पानी पिलाती थी, उसका हौसला बढ़ाती थी। बहन हर दिन डॉक्टर से पूछती कि क्या सुधार हो रहा है। 3-4 दिन थोड़े मुश्किल थे, बुखार कभी कम होता तो कभी बढ़ जाता, लेकिन धीरे धीरे सोनू की हालत में सुधार आने लगा। उसका प्लेटलेट काउंट स्थिर होने लगा, कमजोरी कम होने लगी। एक हफ्ते के अंदर सोनू मुस्कुराने लगा और कुछ दिनों बाद वो पूरी तरह ठीक होकर घर लौट आया। और आज सोनू फिर से खेलता है दोस्तों, हंसता है, स्कूल जाता है। लेकिन अब एक फर्क है, अब उसका पूरा परिवार और गांव पहले से ज्यादा जागरूक हो गया है। उस दिन के बाद गांव में लोगों ने मिलकर सफाई अभियान चलाया, कूलर हर हफ्ते साफ होने लगे, पानी जमा होने वाली जगहों को खत्म किया गया, बच्चों को सिखाया गया कि मच्छरों से कैसे बचना है। साथियों, सोनू की कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। डेंगू खतरनाक जरूर है, लेकिन अगर समय पर पहचान हो जाए और सही इलाज मिले तो जान बचाई जा सकती है। सबसे जरूरी है लापरवाही न करना और सही समय पर सही फैसला लेना। तो साथियों, आपने सुना समय पर सही कदम उठाना कितना जरूरी है। भाभी, आपने इतनी सारी बातें बताई, सच कहूं तो अब थोड़ा डर भी लग रहा है, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, ये बीमारी इतनी तेजी से फैल क्यों रही है?
1: देखें, इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है हमारा बदलता हुआ माहौल। आजकल ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बारिश का समय और तरीका बदल गया है, जगह जगह पर पानी जमा होने की समस्या बढ़ गई है। शहरों में भी, गाँव में भी, हर जगह ऐसे हालात बने हुए हैं जहां मच्छर आसानी से पनप सकते हैं। इसके अलावा लोगों की जीवन शैली भी एक बड़ा कारण है। हम पानी को ढककर नहीं रखते, कूलर साफ नहीं करते, आसपास सफाई नहीं रखते, इन सभी वजह से मच्छरों को पनपने का मौका मिल जाता है। अगर एक बार भी मच्छर संक्रमित हो गया तो वो लोगों को काटकर बीमारियां फैला सकता है।
0: मतलब ये सिर्फ एक बीमारी नहीं है बल्कि हमारे व्यवहार और माहौल का भी नतीजा है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, यही वजह है कि इसका समाधान भी हमारे ही पास है, हमारे ही हाथ में है।
0: क्या बात है, चलिए सीधे सवाल पर आते हैं। तो भाभी अब ये बताइए कि क्या इसका कोई इलाज है? अगर किसी को डेंगू हो जाए तो क्या किया जा सकता है?
1: देखिए आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हमारे श्रोताओं को पता होना चाहिए। डेंगू का कोई खास इलाज नहीं है, यानी इसके लिए कोई ऐसी दवा नहीं है जो सीधे इस वायरस को खत्म कर दे, लेकिन अगर समय पे पहचान हो जाए, सही इलाज मिले तो मरीज पूरी तरह ठीक हो सकता है। डॉक्टर आमतौर पर आराम करने की सलाह देते हैं, ज्यादा से ज्यादा पानी पीने को कहते हैं और बुखार या दर्द के लिए पैरासीटामोल देते हैं। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, खुद से दवा नहीं लेनी चाहिए, खासकर एस्प्रिन जैसी दवाइयाँ बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये खून बहने का खतरा बढ़ा सकती हैं, जो डेंगू में बहुत खतरनाक हो सकता है।
0: मतलब सबसे जरूरी है समय पर जांच और डॉक्टर की सलाह लेना और खुद से इलाज करने की गलती नहीं करनी चाहिए।
1: बिल्कुल, खुद से डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। मैं अपने श्रोताओं को सुनो शादा के माध्यम से यही कहना चाहूंगी, जागरूकता ही असली बचाव है, क्योंकि जब हम डॉक्टर की सलाह लेते हैं तो डॉक्टर हमें बहुत सारे पहलुओं को समझते हुए दवाइयाँ देता है। उससे भी ज्यादा जरूरी है बचाव। दवाई तो जरूरी है ही, लेकिन अगर आप बचाव करना जानते हैं तो आधी बीमारी खुद ब खुद खत्म हो जाती है, क्योंकि अगर हम पहले से सावधान रहें तो इस बीमारी से बचा जा सकता
0: क्या
1: है।
0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत और अच्छी बात आपने कही। और कहते हैं ना कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो भाभी अब सबसे जरूरी सवाल, हमारे श्रोताओं को बताइए कि डेंगू से बचने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे वो अपने घर और परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं।
1: बिल्कुल, मैं अपने सभी श्रोताओं को सुनो शादा के माध्यम से बताना चाहूंगी कि डेंगू से बचाव का सबसे पहला और सबसे असरदार तरीका यही है कि हम मच्छरों को ही ना पनपने दें। इसके लिए अपने घर, छत और आसपास की हर जगह पर खास ध्यान देना चाहिए कि कहीं पानी तो नहीं जमा हो रहा, चाहे वो कूलर हो, बाल्टी हो, गमले हो या गमले की प्लेट हो, छोटे छोटे बर्तन हो, कोई पुराना टायर हो। हर हफ्ते कूलर का पानी खाली करना, उसे साफ करना बहुत जरूरी है। पानी की टंकियों को हमेशा ढककर रखें, जहाँ भी पानी जमा हो सकता है वहीं पर मच्छर पनप जाए, इसलिए समय समय पर सफाई करते रहें। इसके साथ साथ हमें अपने शरीर को भी मच्छरों से बचाना होगा, जितना हो सके पूरे कपड़े पहने, खासकर दिन के समय, क्योंकि ये मच्छर दिन में ज्यादा सक्रिय होता है। सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल और अगर संभव हो सके तो मच्छर भगाने वाली क्रीम या स्प्रे भी लगा सकते हैं। और एक बेहद जरूरी बात, अगर घर में किसी को बुखार है तो उसे भी मच्छरों से बचा कर रखें, ताकि कोई मच्छर उसे काट कर वायरस को दूसरे लोगों तक ना फैला सके।
0: मतलब भाभी ये सिर्फ अपनी सुरक्षा की बात नहीं है बल्कि पूरे परिवार और समाज की जिम्मेदारी है। अगर एक व्यक्ति भी लापरवाही करता है तो उसका असर सब पर पड़ सकता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति के सावधान रहने से काम नहीं चलेगा। जब तक पूरा मोहल्ला, पूरा गांव मिलकर काम नहीं करेगा तब तक इसे रोकना मुश्किल है। इसलिए हर किसी की अपनी जिम्मेदारी बनती है और समुदाय के सभी लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी।
0: अच्छा भाभी एक बात बताइए, ये राष्ट्रीय डेंगू दिवस भी होता है ना, मैंने कहीं सुना था इसके बारे में।
1: हाँ हाँ बिल्कुल, आपने सही सुना था, और राष्ट्रीय डेंगू दिवस हर साल 16 मई को मनाया जाता है। इसका मकसद यही होता है कि लोग समय पर जागरूक हो जाएं, बरसात शुरू होने से पहले तैयारी कर लें, ताकि जब मच्छरों का खतरा बढ़े तो हम सब पहले से तैयार हों और अपनी जिम्मेदारी निभा सकें।
0: तो भाभी गांवों में लोग इसे कैसे मना सकते हैं, क्या सिर्फ भाषण देने से काम चल जाएगा?
1: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, क्या बातें करने से कभी काम चलता है? काम करना जरूरी है। तो मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि इस दिन आप 16 मई यानी डेंगू दिवस के अवसर पर गांव में सफाई अभियान चला सकते हैं, नालियों को साफ कर सकते हैं, जहां पानी जमा है उसे हटा दें, स्कूलों में बच्चों को समझाया जा सकता है कि मच्छर कैसे पैदा होते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कहीं आसपास पानी तो जमा नहीं। जब पूरा गाँव मिलकर काम करेगा और तभी असली बदलाव आएगा। मैं अपने श्रोताओं से कहना चाहूंगी कि जागरूकता बेहद जरूरी है। अगर आपको किसी भी चीज के बारे में जागरूकता है तो उससे सरकार का हमारा आधा काम आसान हो जाता है, क्योंकि आप उस चीज को अच्छे से फॉलो करते हैं।
0: क्या बात है, बहुत सीधी सच्ची अच्छी बात आसान शब्दों में टीकन भाभी आपने हमारे श्रोताओं तक पहुंचा दी। साथियों, आज की इस बातचीत से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है, डेंगू कोई छोटी बीमारी नहीं है, ये धीरे धीरे हमारी जिंदगी में घुसती है और अगर हम सावधान न रहें तो बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम मिलकर कोशिश करें, थोड़ी सी सावधानी बरतें, तो इसे पूरी तरह रोका जा सकता है। याद रखिए, न पानी रुकेगा न मच्छर पनपेगा, तो डेंगू कभी घर नहीं आएगा।
1: और हाँ, हमेशा ये भी याद रखें कि बुखार को कभी भी हल्के में मत लीजिए। अगर किसी को बुखार आए तो समय पर जांच कराइए, डॉक्टर की सलाह लीजिए और अपने घर के आसपास को सुरक्षित रखिए, साफ सुथरा रखिए। छोटी छोटी सावधानियां ही हमें बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा सकती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा टीकन भाभी आपने, और कहते हैं कि स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हम तो कहेंगे कि मस्त रहिए। और इसीलिए बार बार कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है। इसीलिए आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM पर, स्मार्ट के सहयोग से सेहत सही।

0: लाभ कई का विशेष कार्यक्रम हर सुबह 10 बजे। तो श्रोताओं, इसी के साथ हम अपना आज का प्रोग्राम यहीं खत्म करते हैं, पर जाने से पहले हम सब मिलकर आज शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा, क्योंकि सेहत सही तो
0: लाभ कई। दोस्तों, मैं गगन गौतम अब आपसे अनुमति लेता हूँ, विदा लेता हूँ, लेकिन जाते जाते बस इतना कहना चाहता हूँ कि अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और अपने गांव, अपने मोहल्ले को डेंगू से सुरक्षित रखिए। जी टीकन भाभी, आपका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया और बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे श्रोताओं तक पहुँचाई।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आपसे विदा लेती हूँ। एक नए विषय के साथ हम फिर आपसे जुड़ेंगे और हमारी जो श्रृंखला चल रही है सेहत सही लाभ कई स्मार्ट के साथ मिलकर हम जो जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं उसे अपने समुदाय में हम लोग इसी तरीके से लेकर आएंगे। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे अगली कड़ी में एक अगले विषय के साथ।
0: तब तक के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, और आप हमें कॉल कर बता सकते हैं 120-40-60-205 पर कि ये विशेष कार्यक्रम आपको कैसा लगा। इसके अलावा 90.8 FM @sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं, और कभी मुलाकात करना चाहते हैं तो शारदा विश्वविद्यालय के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। और अपने शब्दों को, अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और यही आशा करता हूं कि आप सब अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, न टेंशन लेने की जरूरत, न किसी को टेंशन देने की आवश्यकता। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।
2: अरे सुन।

0: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी का पूरा और पक्का इलाज है, लेकिन इलाज में रुकावट करने से टीबी की दवा मरीज पर असर करना बंद कर देती है। इसलिए ड्रग रेसिस्टेंट टीबी की जांच करना आवश्यक है। DRTB की जांच आधुनिक मशीन CBNAT के द्वारा सरकारी और नोटिफाइड प्राइवेट टीबी मरीजों के लिए मुफ्त उपलब्ध है। इस जाँच की रिपोर्ट केवल 2 घंटे में दी जाती है, जिससे DRTB और उसके सही उपचार का जल्द पता चल जाता है। मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
2: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो एक गंभीर विषय है। जी हाँ, पेशाब, जिसे हम कहते हैं मूत्र। अगर इसमें खून आ रहा है तो आप एक परेशानी से जूझ रहे हैं। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, क्या समस्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि पेशाब में खून आने की ज्यादातर वजह जैसे कुछ दवाएं, छोटी मोटी चोटें या गुर्दे की पथरी, ये सारी चीजें अस्थाई होती हैं, जिनका लंबे समय तक प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यादातर लोगों के लिए मूत्र पथ का संक्रमण इलाज योग्य होता है। अगर जल्दी पता लगा लिया जाए तो मूत्र पथ के कैंसर का भी अच्छा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मूत्र में रक्त दिखाई देने के अधिकांश मामले आपातकालीन स्थिति नहीं होते हैं। हालांकि यदि आप चक्कर आना, पेशाब करने में असमर्थता या अत्यधिक दर्द जैसे लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। लेकिन जिन लोगों के पेशाब में खून की अधिक मात्रा आ रही है, पेशाब करते समय अधिक दर्द हो रहा है, पेशाब करने में कठिनाई या अक्षमता महसूस हो रही है, तो उन्हें उसी समय डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है कि धैर्य रखना क्यों जरूरी है। अगर आप जिंदगी में धैर्य रखते हैं तो निश्चित तौर पर तमाम बीमारियों से आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि धैर्य मन का वो गुण है जिसके होने से मनुष्य विपत्ति के समय भी विचलित नहीं होता है। धैर्य कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति की सहन शक्ति की अवस्था है। ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के मन को क्रोध अथवा खीज जैसी अवगुणों के प्रभाव से बचाती है। धैर्य के तीन गुण क्या हैं? एक्सपर्ट कहते हैं कि आत्मनियंत्रण, स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और बिना किसी शिकायत के इसे सहन करने में सक्षम होना, विनम्रता, ये स्वीकार करना कि आप किसी और से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि आपको इंतजार न करना पड़े, और उदारता, दुनिया को देखकर मुस्कुराना तब भी जब ऐसा लगे ये आपके खिलाफ साजिश रच रही है। तो ये खास जानकारी आपको कैसे लगी बताइएगा जरूर। ऐसी खास अपडेट्स के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

इसे देखो, दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: मैंने वादा किया था बहू से, मैंने वादा किया था, मुझे पूरा करना ही होगा।
2: लो माँ भी आ गई। माँ देखो, तुम्हारा पोता बिल्कुल मुझ पे गया है ना।
1: ये सब बाद में, पहले बच्चा इधर ला। ये ले बहू, लगा अपने सीने से और पिला दूध। देख किया ना मैंने वादा पूरा, पहले घंटे की सुरक्षा का।
3: हाँ माँ जी।
4: जन्म के पहले घंटे में बच्चे को मिले माँ के दूध और तन की गर्मी की सुरक्षा। देर की तो बच्चे की जान को हो सकता है लगभग डेढ़ गुना ज्यादा खतरा। याद रहे वादा पहले घंटे की सुरक्षा का।
5: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
7: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।
8: 5 साल तक नियमित रूप से अपने शिशु का वजन कराएं।
9: अगर उम्र है ज्यादा और वजन है कम
8: तो नहीं है आपके आहार में दम,
9: न घेरे आपके बच्चे को कोई बीमारी।
8: आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सहायता से पाएं अपने बच्चे की वृद्धि की जानकारी।
10: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
11: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि डाइजेशन बढ़ाने के लिए अगर आप चाय पी रहे हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि 4 हर्बल चाय पीजिए। वो कौन कौन सी है इसके विषय में बात करेंगे, लेकिन अगर आपका पेट फूला हुआ है तो वो कम हो जाएगा, या यूं कहें कि पिचक जाएगा, या यूं कहें कि वेट लॉस होगा। जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। ये एक समस्या है, अब बात करते हैं इसी विषय में। पेट फूलने पर आराम के लिए आप पीजिए हर्बल टी। पेट फूलने की समस्या गर्मियों में बढ़ सकती है और मौसम बदलने के साथ ही लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं और इसकी वजह से पेट में गैस बनने लगती है और पेट फूलने लगता है। गर्मियों में बार बार ठंडा पानी पीने, हैवी मील खाने,

ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसी वजह से लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। पेट फूलने की समस्या से आराम पाने के लिए हर्बल टी आप पी सकते हैं। आइए जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। तो बात सामने आती है कैमोमाइल टी के विषय में बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कैमोमाइल के फूलों से तैयार होने वाली हर्बल टी इन्फ्लेमेशन कम करती है और स्ट्रेस से भी राहत दिलाती है। कैमोमाइल टी पीने से पेट की गैस कम होती है। इसी तरह पीरियड्स के दौरान होने वाले मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की समस्या और जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए भी कैमोमाइल की चाय लाभकारी मानी जाती है। सौंफ की चाय। गर्मियों में सौंफ का शरबत पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। ये शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। इसी तरह सौंफ के दानों को उबालकर बनाई जाने वाली चाय भी गर्मियों में डाइजेशन बूस्ट करने का काम करती है। ये चाय पीने से पेट में भारीपन, गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। अब बात करते हैं अजवाइन की चाय के विषय में। ये देसी मसाला गैस और अपच जैसी समस्याओं से आराम दिलाने का खास नुस्खा है। अजवाइन के बीजों को फाकने से अर्थात लेने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम होती है और ये खाने का फ्लेवर भी बढ़ाता है। अजवाइन के बीजों को रात भर पानी में भिगोकर रखें और अगले दिन इस पानी को अच्छी तरह से उबालें, थोड़ा सा काला नमक मिलाएं और इस चाय को छानकर पिएं। इस तरह आप स्वादानुसार शहद भी इस चाय में मिला सकते हैं। अदरक और शहद की चाय। जी हाँ, पेट की समस्याओं से आराम पाने के लिए अदरक यानी कि जिंजर का इस्तेमाल बहुत असरदार माना जाता है। ये पेट की समस्याओं को कम करने के लिए अदरक के साथ नींबू, शहद और हल्दी जैसी चीजों को मिलाकर हर्बल टी बनाई जाती है। अदरक की चाय पीने से डाइजेशन बेहतर बनता है और इससे पेट की गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन के विषय में। अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो नहीं सकती, लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत नहीं है, डाइजेशन सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, तो दिक्कतें परेशानी आपके सामने आती रहेगी। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही कि खराब से खराब डाइजेशन को एक दिन में सुधार देंगे यानी कि ये पांच जूस। वो कौन कौन से पांच जूस हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं और जूस पीने का सही तरीका भी। चलिए विस्तार से बात करते हैं। खराब डाइजेशन कई बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए डाइजेशन को दुरुस्त रखने के लिए पांच हेल्दी जूस जरूर पिएं। बेहतर पाचन के लिए हेल्दी जूस बहुत आवश्यक है। पाचन से जुड़ी समस्याएं बहुत असहज हो सकती हैं, काफी दर्दनाक भी, लेकिन बहुत से तरीकों से इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा करने का एक सबसे आसान तरीका है हेल्दी जूस पीना, जो विटामिन मिनरल्स और डाइजेसिव एंजाइम से भरपूर होते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी हेल्दी जूस के बारे में जो आपके पाचन तंत्र के लिए काफी लाभदायक हो सकते हैं। बात करते हैं अदरक का जूस के विषय में। तो बात सामने आती है कि अदरक का जूस एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो पेट के डिस्कम्फर्ट से राहत दिलाता है और हेल्दी डाइजेशन होने में मदद करता है। अदरक का जूस बनाने के लिए आपको अदरक छील लेना है और उसे छोटा छोटा काट लें। अब थोड़े से पानी के साथ इसे ब्लेंड कर लें और इसके पल्प को छान लें। आप स्वादानुसार नींबू का रस या फिर शहद भी मिला सकते हैं, इससे ये आपको कड़वा नहीं लगेगा। अब बात अनानास का जूस। जी हाँ, अनानास में ब्रोमेलिन नाम का तत्व अधिक मात्रा में होता है, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकता है और इन्फ्लेमेशन कम करने में सहायक होता है। अनानास के जूस का सेवन करने से पाचन में लाभ मिल सकता है और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। आपको केवल ताजा अनानास लेना है, उसे थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। अब इसे छानकर पी सकते हैं। अब बात नींबू के रस की। नींबू का रस भी प्रकृति में अम्लीय होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नींबू की साइट्रिक प्रकृति गुर्दे की पथरी की संभावना को कम करने में मदद करता है। बात एलोवेरा जूस की। एलोवेरा अपनी हीलिंग गुणों के लिए जाना जाता है, इससे इन्फ्लेमेशन कम होने में मदद मिलती है। इससे पेट में हेल्दी बैक्टीरिया का उत्पादन बढ़ता है और पाचन में भी मदद मिलती है। आपको केवल एलोवेरा जेल को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। गाजर का जूस। गाजर में फाइबर अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है और ये पाचन तंत्र को रेगुलेट करने में मदद करता है। इससे हेल्दी बाउल मूवमेंट्स में भी मदद मिलती है। अगर आप इसे नियमित रूप से पीते हैं तो पेट में इन्फ्लेमेशन भी कम हो सकती है और पेट में हेल्दी बैक्टीरिया के उत्पादन में भी मदद मिलती है। आपको केवल गाजर को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड करके छान कर पी लेना है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

0: सुनो शारदा 90.8 FM सुनो शारदा
1: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
2: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर

फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM. Suno Shal.
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है. तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में. यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in.
2: The world is here.
3: मेरी फिल्मों में आपने देखा ही होगा कि अगर विलन को पीटते हुए आधे में छोड़ दिया जाए तो बाद में विलन बदला लेने जरूर आता है और हीरो के लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर देता है. ठीक ऐसे ही अगर हम टीबी का इलाज अधूरा छोड़ दें तो आगे जाके ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी हो सकता है जिसका उपचार लंबा और कठिन भी है. इसीलिए पूरा कोर्स ही है पक्का इलाज. और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री. इंडिया वर्सेस टीबी. टीबी हारेगा, देश जीतेगा.
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं. यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी. यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे. अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in.

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं। चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड। क्या है खास जानकारी, बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी शरीर को मिल सके। इससे एक्सरसाइज करने में भी अच्छे से मदद मिलती है, साथ ही मसल्स की रिकवरी भी सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है। फाइबर, कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है। इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले 1 से 2 उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी। स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। बेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की। केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर की नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन। बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
2: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
3: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
4: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
5: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
3: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम राम।
1: भाई दहेज की आग सुनो, भाई दहेज

0: क्यों कैसे परेशान नजर आ रही हो?
1: मैं आज मैं बेहद परेशान हूँ। क्यों? कि मेरी जो ये लड़की है नहीं, बड़ी उर्मिला,
0: अच्छा
1: ये शादी के योग हो गई और मुझे इसकी तमन्ना बहुत ज्यादा है। इसकी शादी जल्दी से जल्दी हो जानी चाहिए।
0: तो तुम कुछ कहना चाहती हो?
1: हाँ।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: मेरी फिल्मों में आपने देखा ही होगा कि अगर विलन को पीटते हुए आधे में छोड़ दिया जाए तो बाद में विलन बदला लेने जरूर आता है और हीरो के लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर देता है। ठीक ऐसे ही अगर हम टीबी का इलाज अधूरा छोड़ दें तो आगे जाके ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी हो सकता है, जिसका उपचार लंबा और कठिन भी है। इसीलिए पूरा कोर्स ही है पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका वही मन पसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, जब तक किसी राष्ट्र की एकता सशक्त है तब तक वो राष्ट्र भी सशक्त है। राष्ट्रीय एकता लोगों में राष्ट्र के प्रति प्रेम और अपनत्व का भाव प्रदर्शित करती है। राष्ट्रीय एकता राष्ट्र को सशक्त और संगठित बनाती है। राष्ट्रीय एकता ही वो भावना है जो विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जाति, वेशभूषा, सभ्यता और संस्कृति के लोगों को एक सूत्र में बांधती है। अनेक विभिन्नताओं के बाद भी सभी लोग परस्पर मेलजोल से रहते हैं। हमारा भारत देश राष्ट्रीय एकता की एक मिसाल है। जितनी विभिन्नताएं हमारे देश में हैं, उतनी शायद ही विश्व के किसी अन्य देश में देखने को मिले। हमारे देश में अनेक जातियों और संप्रदायों के लोग रहते हैं, जिनके रहन सहन, खान पान और वेशभूषा बिल्कुल अलग है। ये सभी राष्ट्रीय एकता के एक सूत्र में बंधे हुए हैं। जिस भूमि पर हम जन्म लेते हैं, पलते हैं, बड़े होते हैं, वो हमारी जन्मभूमि, कर्मभूमि और हमारा राष्ट्र होती है। उसके प्रति गहरा प्रेम ही राष्ट्रीयता की भावना होती है। हम सदैव उसके गौरव की रक्षा करें और साथ ही उसकी संस्कृति, उसके प्राकृतिक संसाधनों और उसकी आर्थिक समृद्धि में योगदान करने का दायित्व निभाएं। और ऐसी धार्मिक, राजनीतिक, भाषागत और जातिगत धारणा से बचें जिससे राष्ट्रीय एकता में बाधा पहुंचती हो। तो हमारी राष्ट्रीय एकता यूं ही मजबूती के साथ बनी रहे, इसके लिए हमें आपसी भेदभाव भुलाकर प्रेम और सद्भावना को बढ़ावा देना होगा। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही राष्ट्रीय एकता की, और जब बात राष्ट्र की हो रही है तो इसी क्रम में आपको सुनवाते हैं एक देशभक्ति गीत। कलाकार हैं ऋषिपाल खदाना और उनके साथी। तो आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे ऋषिपाल खदाना और उनके साथियों से ये देशभक्ति गीत। किसान मित्रों, ये बात तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर फसल को आवश्यकता अनुसार पानी ना मिले तो फसल बर्बाद हो जाती है, जिससे हमारे किसान भाइयों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। और हमारे देश में ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां भूजल स्तर काफी नीचे चला गया है। ऐसी जगह पानी की बहुत किल्लत रहती है और फसलों को उचित मात्रा में पानी भी नहीं मिलता और किसान भाइयों को खेती करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसान मित्रों, आपको बता दें कि हमारे देश की 85% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए भूजल का उपयोग करती है। 65% भूजल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र की पानी की जरूरतों को भी भूजल से ही पूरा किया जाता है। पानी के इसी अतिदोहन और अनियमित उपयोग के कारण भूजल स्तर में तेजी से गिरावट आ रही है। भूजल स्तर में गिरावट को रोकने के लिए भारत सरकार ने अटल भूजल योजना चलाई है। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा सामुदायिक नेतृत्व वाला भूजल प्रबंध

प्रबंधन कार्यक्रम है। इस योजना का लक्ष्य देश के उन इलाकों में भूजल के स्तर को ऊपर उठाने का है जिन इलाकों में भूजल का स्तर काफी नीचे चला गया है। योजना का उद्देश्य भूजल की मात्रा में इजाफा करना है, साथ ही किसानों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से भी ये योजना भारत सरकार की ओर से लाई गई है। इस योजना के तहत भारत सरकार किसानों को खेती के लिए पर्याप्त मात्रा में जल भंडारण सुनिश्चित करेगी। साथ ही सरकार का कहना है कि इस योजना के जरिए किसानों की आय दोगुनी करने में भी मदद मिलेगी। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना अटल भूजल योजना के बारे में, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक देशभक्ति रागनी। कलाकार हैं सुनील चौहान।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे सुनील चौहान से ये देशभक्ति रागनी। किसान मित्रों, आजकल हर कोई किसान भाई चाहता है कि वो अपने खेत में 12 महीने फसल उगाए और उसे बेचकर अच्छे पैसे कमाए। ऐसे में ग्रीन हाउस तकनीक का इस्तेमाल करके आप खेती से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपने खेत में 12 महीने खेती करना चाहते हैं तो आपको ग्रीन हाउस तकनीकी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसका सहारा लेना पड़ेगा, तभी आपकी ये इच्छा पूरी होगी। और इस तकनीक से आप 12 महीने खेती कर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। किसान मित्रों, ग्रीन हाउस का मतलब ऐसी परिस्थिति से जहां आप स्वयं से वातावरण को नियंत्रित करके फसल को आसानी से उगा सकते हैं। ग्रीन हाउस तकनीक से फसलों को विकसित करने और उत्पाद बढ़ाने में मदद मिलती है। अगर हम आसान भाषा में कहें तो ये फसलों को संरक्षित करने का एक तकनीक है। तो किसान मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने खेत में 12 महीने फसल करें तो आपको ग्रीन हाउस तकनीक का सहारा लेना ही पड़ेगा। अगर आप इस तकनीक का सहारा लेकर के फसल करना चाहते हैं तो आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर के इस तकनीक के बारे में और विस्तार से समझ सकते हैं और किन किन उपकरणों की इसमें आवश्यकता होगी ये भी आपको वहां बता दिया जाएगा। साथ ही साथ कोई प्रशिक्षण होता होगा इसके बारे में तो वो भी आपको दे दिया जाएगा।

जब आप सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, तब इस तकनीक के जरिए आप 12 महीने खेती करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना ग्रीन हाउस तकनीक के बारे में, और अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक और देशभक्ति रागनी। कलाकार हैं ज्ञानेंद्र सरधाना और पूजा शर्मा।

ज्ञानेंद्र सरधाना और पूजा शर्मा द्वारा गाई गई इसी देशभक्ति रागनी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। लेकर हाजिर हूं आपका वही मन पसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, जब तक किसी राष्ट्र की एकता सशक्त है तब तक वो राष्ट्र भी सशक्त है। राष्ट्रीय एकता लोगों में राष्ट्र के प्रति प्रेम और अपनत्व का भाव प्रदर्शित करती है। राष्ट्रीय एकता राष्ट्र को सशक्त और संगठित बनाती है। राष्ट्रीय एकता ही वो भावना है जो विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जाति, वेशभूषा, सभ्यता और संस्कृति के लोगों को एक सूत्र में बांधती है। अनेक विभिन्नताओं के बाद भी सभी लोग परस्पर मेलजोल से रहते हैं। हमारा भारत देश राष्ट्रीय एकता की एक मिसाल है। जितनी विभिन्नताएं हमारे देश में हैं, उतनी शायद ही विश्व के किसी अन्य देश में देखने को मिलें। हमारे देश में अनेक जातियों और संप्रदायों के लोग रहते हैं, जिनके रहन सहन, खान पान और वेशभूषा बिल्कुल अलग है। ये सभी राष्ट्रीय एकता के एक सूत्र में बंधे हुए हैं। जिस भूमि पर हम जन्म लेते हैं, पलते हैं, बड़े होते हैं, वो हमारी जन्मभूमि, कर्म भूमि और हमारा राष्ट्र होती है। उसके प्रति गहरा प्रेम ही राष्ट्रीयता की भावना होती है। हम सदैव उसके गौरव की रक्षा करें और साथ ही उसकी संस्कृति, उसके प्राकृतिक संसाधनों और उसकी आर्थिक समृद्धि में योगदान करने का दायित्व निभाएं और ऐसी धार्मिक, राजनीतिक, भाषागत और जातिगत धारणा से बचें जिससे राष्ट्रीय एकता में बाधा पहुंचती हो। तो हमारी राष्ट्रीय एकता यूं ही मजबूती के साथ बनी रहे, इसके लिए हमें आपसी भेदभाव भुलाकर प्रेम और सद्भावना को बढ़ावा देना होगा। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही राष्ट्रीय एकता की, और जब बात राष्ट्र की हो रही है तो इसी क्रम में आपको सुनवाते हैं एक देशभक्ति गीत। कलाकार हैं ऋषिपाल खदाना और उनके साथी। तो आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे ऋषिपाल खदाना और उनके साथियों से ये देशभक्ति गीत। किसान मित्रों, ये बात तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर फसल को आवश्यकता अनुसार पानी ना मिले तो फसल बर्बाद हो जाती है, जिससे हमारे किसान भाइयों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। और हमारे देश में ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां भूजल स्तर काफी नीचे चला गया है, ऐसी जगह पानी की बहुत किल्लत रहती है और फसलों को उचित मात्रा में पानी भी नहीं मिलता और किसान भाइयों को खेती करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसान मित्रों, आपको बता दें कि हमारे देश की 85% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए भूजल का उपयोग करती है। 65% भूजल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र की पानी की जरूरतों को भी भूजल से ही पूरा किया जाता है। पानी के इसी अतिदोहन और अनियमित उपयोग के कारण भूजल स्तर में तेजी से गिरावट आ रही है। भूजल स्तर में गिरावट को रोकने के लिए भारत सरकार ने अटल भूजल योजना चलाई है। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा सामुदायिक नेतृत्व वाला भूजल प्रबंधन कार्यक्रम है। इस योजना का लक्ष्य देश के उन इलाकों में भूजल के स्तर को ऊपर उठाने का है जिन इलाकों में भूजल का स्तर काफी नीचे चला गया है। योजना का उद्देश्य भूजल की मात्रा में इजाफा करना है, साथ ही किसानों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से भी ये योजना भारत सरकार की ओर से लाई गई है। इस योजना के तहत भारत सरकार किसानों को खेती के लिए पर्याप्त मात्रा में जल भंडारण सुनिश्चित करेगी। साथ ही सरकार का कहना है कि इस योजना के जरिए किसानों की आय दोगुनी करने में भी मदद मिलेगी। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना अटल भूजल योजना के बारे में, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक देशभक्ति रागनी। कलाकार हैं सुनील चौहान।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे सुनील चौहान से ये देशभक्ति रागनी। किसान मित्रों, आजकल हर कोई किसान भाई चाहता है कि वो अपने खेत में 12 महीने फसल उगाए और उसे बेचकर अच्छे पैसे कमाए। ऐसे में ग्रीन हाउस तकनीक का इस्तेमाल करके आप खेती से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपने खेत में 12 महीने खेती करना चाहते हैं तो आपको ग्रीन हाउस तकनीकी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसका सहारा लेना पड़ेगा, तभी आपकी ये इच्छा पूरी होगी। और इस तकनीक से आप 12 महीने खेती कर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। किसान मित्रों, ग्रीन हाउस का मतलब ऐसी परिस्थिति से जहां आप स्वयं से वातावरण को नियंत्रित करके फसल को आसानी से उगा सकते हैं। ग्रीन हाउस तकनीक से फसलों को विकसित करने और उत्पाद बढ़ाने में मदद मिलती है। अगर हम आसान भाषा में कहें तो ये फसलों को संरक्षित करने का एक तकनीक है। तो किसान मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने खेत में 12 महीने फसल करें तो आपको ग्रीन हाउस तकनीक का सहारा लेना ही पड़ेगा। अगर आप इस तकनीक का सहारा लेकर के फसल करना चाहते हैं तो आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर के इस तकनीक के बारे में और विस्तार से समझ सकते हैं और किन किन उपकरणों की इसमें आवश्यकता होगी ये भी आपको वहां बता दिया जाएगा। साथ ही साथ कोई प्रशिक्षण होता होगा इसके बारे में तो वो भी आपको दे दिया जाएगा। जब आप सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, तब इस तकनीक के जरिए आप 12 महीने खेती करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना ग्रीन हाउस तकनीक के बारे में। और अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक और देशभक्ति रागनी। कलाकार हैं ज्ञानेंद्र सरधाना और पूजा शर्मा।

ज्ञानेंद्र सरधाना और पूजा शर्मा द्वारा गाई गई इसी देशभक्ति रागनी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: सुनो शारदा 90.8 FM
1: Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा लर्निंग कोडिंग एआई साइबर सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700 सीट्स आर लिमिटेड हरी अप कहीं देर ना हो जाए।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए चलते हैं कक्षा 2 की ध्वनि शाला में।
1: प्यारे बच्चों, आप सभी को उषा दीदी का ढेर सारा प्यार, लाड़ और दुलार। कैसे हैं आप सब? खूब मजे में होंगे। आजकल तो आप अपने चैनल पर अपनी पसंद की कहानियां और अपनी कविताएं सुन रहे होंगे। खूब मजा आ रहा है ना? मुझे भी बहुत मजा आ रहा है इतनी प्यारी और मजेदार कहानियां सुनकर। अच्छा बच्चों, कभी आपने यह सोचा है कि हमारे आसपास जो जानवर रहते हैं, ये दरअसल आए कैसे? ये तो ज्यादातर जंगल में रहते हैं। तो ये जानवर आए कैसे? बिल्ली कैसे आई? कुत्ता कैसे आया? घोड़ा कैसे आया? आप सभी अब सोच में पड़ गए होंगे। सोचिए सोचिए, मैं भी सोचती हूँ। तो मैं आप सबके लिए एक मजेदार चित्रकथा लेकर आई हूँ। जानते हैं उस चित्रकथा का नाम क्या है? उस चित्रकथा का नाम है बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के संग। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी यह सवाल हमारे दिमाग में जरूर आता है कि आखिर बिल्ली हमारे संग कैसे रहने आई? वह तो कहीं और रह सकती थी, वह हमारे घर के अंदर कैसे रहने लगी? बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग अब बिल्ली को भी पालतू बनाकर अपने घर में रखते हैं और बिल्ली यहाँ घूम

आई। तो शुरू करें? ठीक है। तो बच्चों हुआ यूं कि बिल्ली अपने मौसेरे भाई शेर के साथ जंगल में एक बड़े से महल में रहती थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बिल्ली, मौसेरा भाई, शेर, जंगल, ये क्या बात हुई? बिल्ली तो हमारे घर में रहती है। ये तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, लेकिन बहुत समय पहले बिल्ली अपने मौसेरे भाई शेर के साथ जंगल में रहती थी। बिल्ली और शेर का क्या संबंध है? अब आप अपना सिर खुजला रहे होंगे। आप मुझे देख नहीं पा रहे, लेकिन मैं आपको देख पा रही हूँ और आपके सिर की खुजलाहट की आवाज को सुन भी पा रही हूँ। तो सारे बच्चे अपना सिर खुजला रहे हैं कि आखिर बिल्ली और शेर वो मौसेरा भाई कैसे हुआ? तो बच्चों पता है आपको, हम शेर को बिग कैट भी कहते हैं, यानी कि बड़ी बिल्ली। तो बिल्ली अपने मौसेरे भाई शेर के साथ जंगल में एक बड़े से महल में रहती थी, लेकिन वह वहाँ खुश नहीं थी। अक्सर शेर बिल्ली से अपने बहुत सारे काम करवाता था और वह कहता था बहुत प्यार से, बहन, और बिल्ली कहती थी ओह अब कोई काम आ गया, लेकिन वह खुश होकर जवाब देती, आई भैया, आई, मैं आ गई। इधर शेर ने पुकारा और उधर बिल्ली बहन हाजिर। पता है शेर ने क्या कहा बिल्ली से? शेर ने कहा, मेरे खाने का वक्त हो गया और तुमने अभी पत्तल भी नहीं बिछाई। बस अभी बिछाती हूँ भैया। बिल्ली तुरंत केले का पत्ता ले आई और शेर के सामने बिछा दिया। आज सुबह मैंने भेड़िया पकड़ा था, वह परोसो। और बिल्ली ने भेड़िये को केले के पत्ते पर परोस दिया और शेर मजे से भेड़िया खाने लगा। आहा, स्वाद आ गया, खूब मजा आ गया। इधर शेर भेड़िये को सफा चट कर रहा था, लेकिन उसने बिल्ली से एक बार भी नहीं पूछा कि बहन बिल्ली, तुम भी नाश्ता करोगी या नहीं करोगी। जब शेर ने पूरा भेड़िया सफा चट कर लिया, यानी कि पूरा भेड़िया खा लिया, हजम कर लिया, उसके बाद उसने बिल्ली से कहा, पेट भर गया बहन, साफ कर लो सब। हाँ भैया, करती हूँ। और बिल्ली ने झूठी पत्तल उठाकर कूड़ेदान में डाल दी और वह मन ही मन सोचने लगी, लो कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए, रोज यही होता है। पता है बच्चों एक दिन क्या हुआ? एक दिन शेर बीमार पड़ गया और उसका हाल चाल पूछने जंगल के बहुत सारे जानवर आए। कौन कौन से जानवर आए? हाथी, बंदर, खरगोश, भालू, भेड़िया, ये सारे जानवर शेर का हाल चाल पूछने आए। बिल्ली ने जानवरों का स्वागत करने के लिए हर एक से बात की, और आप कैसे हैं, आप ठीक हैं, आपने कुछ खाया या नहीं। बिल्ली ने सभी जानवरों का बहुत खुशी से स्वागत किया, लेकिन ठीक तभी पता है क्या हुआ? शेर की आवाज आई, बहन नाश्ता बनाकर सबको दो, जाओ जल्दी करो। तो बिल्ली शेर की आवाज सुनकर डर गई। उसने कहा, भैया घर में आग तो है ही नहीं। तो जाओ आदमियों की बस्ती से सुलगती लकड़ी लेकर आओ, भागो। सो बिल्ली भागी भागी झाड़ियों पत्थरों को फलांगती हुई गांव में पहुंची। हांफती हुई बेचारी थक गई थी। तभी बिल्ली ने देखा कि बस्ती में दो बच्चे थे और उसमें एक लड़की ने बिल्ली को देख लिया था और वह तुरंत बोली, भैया वहां देखो। और दोनों बच्चे बिल्ली के पास पहुंच गए। इधर बिल्ली बहुत डरी हुई थी, उसने कभी मनुष्यों को देखा ही नहीं था, लेकिन उस प्यारी सी छोटी सी बच्ची ने बिल्ली से कहा, डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। और फिर उस छोटी बच्ची ने बिल्ली के पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, कितनी मुलायम और रेशमी है, कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर है। जिस काम से बिल्ली आई थी उसे भूलकर बहुत देर तक बच्चों

0: उसे लाड़ करवाती रही और मन ही मन सोचती रही, मुझे कभी किसी से इतना प्यार नहीं मिला था। बिल्ली सोचने लगी। अचानक जोर की गरज से जंगल कांप उठा। वाह! यह शेर की दहाड़ थी। ओह, बिल्ली को याद आया, हाय रे, मुझे सुलगती लकड़ी लेकर जानी थी, मैं भूल कैसे गई। और बिल्ली एक घर में घुसी और एक सुलगती लकड़ी उठाकर झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई जंगल की तरफ जोर से भागी। अचानक फिर वही डरावनी गर्जन हुई, वाह! और बिल्ली कांपती कांपती शेर को देखने लगी, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो उठी थी। वह इतनी डर गई थी कि उसने जलती लकड़ी उसके पैरों के पास गिरा दी और कूदती हुई वापस गांव भागी। यहां सभी बच्चे आपस में बिल्ली के बारे में ही बात कर रहे थे। तभी बिल्ली बच्चों के पास पहुंच गई और उस छोटी सी लड़की ने कहा, देखो बिल्ली वापस आ गई, जरूर शेर ने उसे बुरी तरह डरा दिया है। सब बच्चों ने बिल्ली को खूब लाड़ लड़ाया और कहा, हाँ हमारे पास रहो नन्नी मुन्नी, वापस मत जाओ, नहीं जाओगी ना? नहीं, कभी नहीं, बिल्ली ने प्यार से कहा। और बच्चों, इस तरह से बिल्ली मनुष्य के संग रहने लगी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? आपको इसमें सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा? शेर का गरजना अच्छा लगा, बिल्ली का दौड़ना अच्छा लगा, बच्चों की बातें अच्छी लगी, या फिर यह अच्छा लगा कि अब बिल्ली बच्चों के साथ रहने लगी थी? मुझे कहानी का यह हिस्सा बहुत पसंद आया कि अब बिल्ली मनुष्य के साथ रहने लगी। जो बस्ती के गांव के छोटे छोटे बच्चे थे, वे बिल्ली को बहुत प्यार करते थे। कभी कोई उसकी पीठ पर हाथ फेरता बहुत प्यार से, तो कभी कोई उसके गले में मफलर डाल देता कि कहीं बिल्ली को ठंड ना लग जाए। सारे बच्चे बिल्ली को घेर कर बैठ जाते थे और इधर बिल्ली थी कि वह भी आराम से आग बंद करके बैठी रहती और सब बच्चों से लाड़ लड़ाती, खूब प्यार करवाती। उसे धीरे धीरे जंगल की आदत भूल गई और अब वह बच्चों के संग, मनुष्य के संग आराम से रहने लगी। तो बच्चों, हमने ये जाना कि शेर, मौसेरा भाई, जंगल, बच्चे और बस्ती, यानी कि इस पूरी कहानी में हमें ये पता चला कि दरअसल हम शेर को बिग कैट कहते हैं, बड़ी बिल्ली। और हमने तरह तरह के जानवरों की तरह तरह की आवाजों को भी सुना कि वे कैसे बोलते होंगे, कैसे गर्जना करते होंगे और क्या आवाज आती होगी। तो क्या आप इन सब आवाजों को पहचान सकेंगे? तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सुनिए यह आवाज। और अब आप सुनिए यह आवाज। और अब आप सुनिए यह आवाज। और अब इसके बाद सुनिए यह आवाज। और बच्चों, अब आप इस आवाज को तो पहचान ही जाएंगे, तो लीजिए सुनिए यह आवाज। ये तो बिल्कुल सही पहचाना, ये तो बिल्ली की आवाज है। और बिल्ली कैसे बोलती है? म्याऊं। तो ये कहानी आप अपनी नानी को, दादी को, मम्मी को, पापा को, अपने दोस्तों को और अपने भाई बहनों को जरूर सुनाइएगा। और जब शेर की बारी आए और आप शेर का संवाद बोलें, यानी कि जो शेर ने बिल्ली से कहा था, और उसे भारी आवाज में बोलिएगा, खूब तेज गर्जना कीजिएगा। तो ये कहानी आप सुनिए, सुनाइए और खूब मजे से हमारे इस चैनल पर बाकी जो कहानियां हैं उनका भी मजा लीजिए। तो हमने आज ये कहानी सुनी कि बिल्ली मनुष्य के संग कैसे रहने आई। इस कहानी में तो आपको खूब मजा आया होगा और आप सबको अपने अपने घर के आसपास जो तरह तरह की बिल्लियां हैं वह भी देखने में मजा आ रहा होगा। इस कहानी के बाद से मुझे पक्की तरह से मालूम है कि अब आप बिल्ली को एक अलग नजर से देखेंगे। अब आप बिल्ली को बहुत प्यार करेंगे, बिल्ली से डरेंगे भी नहीं और उसे खूब लाड़ लड़ाएंगे। और बिल्ली जब खूब लाड़ लड़वाती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। प्यार करना, प्यार पाना सभी को तो अच्छा लगता है। जैसे आप बच्चों को अच्छा लगता है, वैसे हमारे आसपास के सभी जानवरों को, पक्षियों को भी प्यार करवाना बहुत पसंद है। अच्छा, पता है मुझे एक बार एक कहानी याद आई। ये कहानी एक दादी की थी और उसमें एक बिल्ली थी। पता है बिल्ली सारा दिन घर में इधर उधर घूमती रहती थी। तो क्या हम ये कहानी सुने कि क्या हुआ? तो आइए हम ये कहानी सुनते हैं। इस कहानी का शीर्षक पता है क्या है? म्याऊ। म्याऊ तो नहीं है, इस कहानी का शीर्षक है ऊन का गोला। तो आइए सुनते हैं ऊन का गोला कहानी। प्यारे बच्चों, इस कहानी में एक है नानी और एक है मुनमुन। मुनमुन कौन? अरे वही मुनमुन म्याऊ, यानी बिल्ली। बिल्ली का नाम है मुनमुन और उस घर में रहती है एक नानी। पता है बच्चों, एक दिन मेरी नानी धूप में स्वेटर बुन रही थी। नानी के पास ऊन का गोला था। ऊन तो सब बच्चे जानते होंगे, जिससे स्वेटर बनता है। शाबाश। तो एक दिन नानी धूप में स्वेटर बुन रही थी। नानी के पास लाल ऊन का गोला था। नानी आंगन में बैठकर स्वेटर बुन रही थी और गोला उनकी गोद में पड़ा हुआ था। पता है आगे क्या हुआ? मुनमुन वही नानी के पास बैठकर यह सब देख रही थी। वह ऊन के गोले को बहुत गौर से देख रही थी और गोला धीरे धीरे हिल रहा था और मुनमुन भी अपना सिर धीरे धीरे हिलाती थी। जैसे गोला हिलता वैसे मुनमुन अपना सिर हिलाती। इधर नानी की गोद में लाल रंग का ऊन का गोला हिलता और इधर मुनमुन अपना सिर हिलाती। उसे अपना सिर हिलाने में और ऊन के गोले को हिलते हुए देखने में बहुत मजा आ रहा था। तभी पता है क्या हुआ? नानी को स्वेटर बुनते बुनते नींद आ गई और ऊन का गोला नीचे लुढ़क गया। गोला लुढ़क कर मुनमुन के पास पहुंच गया। पता है बच्चों, मुनमुन को क्या लगा? मुनमुन को लगा कि अरे ये तो गेंद है। तो यानी मुनमुन बिल्ली ने उस ऊन के गोले को गेंद समझ लिया। अब आप सोचिए कि इसके बाद क्या होगा? क्या मुनमुन गेंद से खेलेगी, या मुनमुन गेंद को अपने पैर से दूर भगा देगी, या मुनमुन उस ऊन के गोले को खाने लगेगी? तो देखते हैं कि कहानी में आगे क्या होता है। बिल्कुल सही पहचाना आपने, दरअसल मुनमुन ऊन के गोले से खेलने लगी। उसे गेंद से खेलने में मजा आता है। गेंद भी गोल और ऊन का गोला भी गोल। तो फिर मुनमुन को यूं लगा कि ये ऊन का गोला गोला नहीं बल्कि गेंद है और वह उनके गोले से खेलने लगी। वह अपने पंजे से गोले पर निशाना मारती और ऊन का गोला आगे लुढ़क जाता, कभी दाएं जाता कभी बाएं जाता। और धीरे धीरे पता है क्या हुआ? मुनमुन ऊन का गोला यहाँ वहां लुढ़काने लगी और मुनमुन उसके पीछे भी भागने लगी। जहां जहां उनका गोला जाता मुनमुन भी उसके पीछे चली जाती। अब आप सोचिए कि बहुत देर से मुनमुन ऊन के गोले के साथ खेल रही थी और ऊन का गोला छोटा होता जा रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि ऊन का गोला छोटा कैसे हो रहा है? सोचिए, यही तो बात है सोचने वाली कि दरअसल मुनमुन जिस ऊन के गोले के साथ खेल रही थी, धीरे धीरे वह ऊन का गोला छोटा कैसे होता जा रहा था। कुछ समझ में आया? बिल्कुल सही पहचाना आपने। जब मुनमुन ऊन के गोले को यहाँ वहां पंजे से मार रही थी तो ऊन का गोला कभी दाईं तरफ लुढ़कता तो कभी बाईं तरफ, फिर कभी दाईं तरफ तो फिर कभी बाईं तरफ। और धीरे धीरे ऐसे लुढ़कते लुढ़कते पूरे घर में ऊन का गोला खुलता जा रहा था, ऊन खुलती जा रही थी और इस तरह से ऊन का गोला धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था और मुनमुन उसके पीछे पीछे भाग रही थी। ऊन का गोला खुलता गया खुलता गया खुलता गया और वह बहुत छोटा हो गया। तो फिर आगे क्या हुआ होगा? क्या मुनमुन ऊन के गोले से ऐसे ही खेल रही होगी? और जब ऊन का गोला बहुत इतू सा रह गया तो फिर मुनमुन ने क्या किया होगा? तो ऊन का गोला इतू सा रह जाता, बहुत छोटा सा रह जाता, इससे पहले पता है क्या हुआ? थोड़ी थोड़ी ऊन मुनमुन के पैरों में भी फंस रही थी। मुनमुन उसको पंजे से निकाल देती थी और गोला लुढ़क लुढ़क कर छोटा सा रह गया। अब मुनमुन उसको पकड़ नहीं पा रही थी। आप सोच रहे होंगे कि ये नानी क्या कर रही थी? अरे भाई, बताया तो था कहानी में कि नानी को तो नींद आ गई थी और नानी बहुत गहरी नींद में सो रही थी। उन्हें यह बिल्कुल भी नहीं पता चला कि कब ऊन का गोला उनकी गोद से लुढ़क कर नीचे आ गया और मुनमुन उसे गेंद समझकर खेलने लगी। पता है बच्चों, गोला जब पूरा खुल गया तो गायब हो गया। गायब कैसे हो गया? अरे भाई, अभी तो बताया, ऊन का गोला जब पूरे घर में लुढ़कता गया लुढ़कता गया तो ऊन खुलती गई खुलती गई खुलती गई और जो गोला था अब उसमें ऊन का अंतिम हिस्सा नजर आ रहा था। जब गोला पूरा खुल गया तो गायब हो गया। अब मुनमुन परेशान होकर गोले को ढूंढने लगी। अरे गोला कहाँ गया? यही तो था। अरे गोला कहाँ गया? यही तो था। मुनमुन ने दरवाजे के पीछे देखा, चारपाई के नीचे देखा और तो और उसने पटरी के नीचे भी देखा, लेकिन मुनमुन को ऊन का गोला कहीं नजर नहीं आया। वह कभी आगे देखती तो कभी पीछे देखती, लेकिन ऊन का गोला तो था ही नहीं। इसके बाद क्या हुआ होगा? इसके बाद क्या हुआ कि मुनमुन भागकर नानी के पास वापस चली गई, पर नानी अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। तो अब आप सोचिए और बताइए कि मुनमुन भागकर नानी के पास वापस क्यों गई? शायद इसलिए क्योंकि अब मुनमुन को ऊन का गोला नहीं दिख रहा था और वह नानी के पास जाकर ये कहती, नानी नानी, ऊन का गोला नहीं मिल रहा, खोज कर दे दीजिए ना। या ये भी हो सकता था कि मुनमुन को लगा कि नानी अब उसे डांटेंगी, तो वह पहले ही नानी को बता दे कि ऊन का गोला उसने नहीं लिया, न जाने ऊन का गोला कहाँ गायब हो गया। या फिर ये भी हो सकता है कि वह नानी के पास जाती और ये कहती कि नानी एक और ऊन का गोला दे दीजिए ना, लेकिन मुनमुन को तो लगता था कि ऊन का गोला नहीं बल्कि गेंद है। तो मुनमुन नानी के पास जाकर क्या कहती? यही कहती कि नानी नानी, मुझे एक गेंद और दे दीजिए ना। अगर नानी उठ जाती, सोचिए बच्चों, अगर नानी उठ जाती और देखती कि मुनमुन ने उनके ऊन के गोले का क्या किया है तो कितना गुस्सा होती है ना। पूरे घर में ऊन ही ऊन फैली हुई थी। अब नानी स्वेटर कैसे बनाती? यूं तो ऊन का गोला खुलकर सारे धागे उसके उलझ गए थे। अब नानी को स्वेटर बनाने में बहुत दिक्कत होती। तो फिर नानी अगर जग जाती तो मुनमुन पर बहुत नाराज होती। लेकिन मुनमुन तो बहुत प्यारा सा मासूम सा चेहरा बनाकर नानी के पास जाती, अपने एक पंजे से नानी का हाथ हिलाती और फिर उदास सा चेहरा लेकर बोल देती कि नानी ऊन का गोला पता नहीं कहाँ गया। लेकिन नानी जब देख लेती कि पूरे घर में ऊन ही ऊन फैली हुई है तो वे समझ जाती कि आखिर मुनमुन ने ऊन के गोले का क्या किया। नानी तो ये समझ जाती कि मुनमुन ने उनके गोले का क्या किया, लेकिन आपको भी समझ में आया कि मुनमुन ने उनके गोले का क्या किया? बिल्कुल सही कहा आपने, मुनमुन ने उनके गोले को गेंद समझकर खूब खेला और उसके बाद उनका गोला खुलता गया खुलता गया खुलता गया और अंत में उनका गोला गायब हो गया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? है ना मजेदार। लेकिन सोचिए कि अगर आप स्वेटर बना रहे हैं और ऊन का गोला आपके पास है और गोला गलती से जमीन पे गिर गया और आपकी जो पालतू बिल्ली है उसे गेंद समझकर खेलने लगे, तो आप क्या करेंगे? कुछ बच्चे कहेंगे कि हम मुनमुन को खेलने देंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप स्वेटर के लिए जो ऊन लेकर आए थे, ऊन का गोला लेकर आए थे, अब आप स्वेटर नहीं बना सकेंगे। तो फिर वो बच्चे कहेंगे, हाँ तो कोई बात नहीं, हम मुनमुन के लिए एक अलग सा ऊन का छोटा सा गोला लाकर दे देंगे और कहेंगे, ये लो मुनमुन, ये रही तुम्हारी गेंद। हाँ, ये बात तो मुझे बहुत पसंद आई, आखिर मुनमुन को भी तो गेंद से खेलना अच्छा लगता है, जैसे आप सब बच्चों को गेंद से खेलना बहुत पसंद है। आपको याद है ना, जीत और बबली क्रिकेट खेल रहे थे, उनकी गेंद मोहित के आंगन में गई थी, मोहित के घर पे ताला लगा था, तो जीत और बबली ने पुरानी कतरनों से, पुरानी पन्नियों से और सुतली से लपेटकर एक गेंद बनाई थी और जब गेंद पर शॉट लगा, यानी कि बल्ला घुमाया जीत ने, तो पूरी गेंद खुलकर बिखर गई। ठीक ऐसे ही इस कहानी में भी मुनमुन ने ऊन के गोले के साथ यही किया। ऊन के गोले के साथ वे गेंद की तरह समझकर खेलती रही और ऊन का गोला पूरी तरह से खुल गया। तो आप अपनी एक और नई कहानी बनाइए कि जब नानी जगी होंगी तो आगे क्या हुआ होगा। तो बस अपनी कहानी बनाइए और हमारे पास भेजिए। कहाँ भेजनी है? भेजने का पता है earlyliteracy.ncert@gmail.com। मैं एक बार और दोहरा देती हूँ, earlyliteracy.ncert@gmail.com। तो बस हम आपकी मजेदार कहानियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब तक के लिए मैं उषा दीदी आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत श्रृंखला ध्वनि शाला। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता और जगबंधु जाना। ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो और शानु मुक्सीम। निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ। स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर हम एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत से ही लाभ गई। इसी के अंतर्गत एक खास बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। दोस्तों, जब भी हम सफर पर निकलते हैं या निकलने से पहले हर चीज की प्लानिंग करते हैं, नया स्कूटर या कार खरीदने से पहले हर विकल्प पर सोचते हैं, तो फिर अपने परिवार की योजना बनाने से पहले क्यों नहीं सोचते? ये तो जिंदगी भर का फैसला है। आपके परिवार को नियोजित रखने के लिए आपके पास गर्भ निरोधक के कई विकल्प हैं। जब आपके पास सही जानकारी होगी तभी आप अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर, अपने जीवन और अपने भविष्य के बारे में सही फैसला ले पाएंगे। तो झिझके नहीं, आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और अपने सभी गर्भ निरोधक विकल्प जानें। ये खास जानकारी सुनो शारदा 90.8 FM के माध्यम से स्मार्ट के सहयोग से सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत मैं आप तक पहुंचा रहा था। अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि डाइजेशन बढ़ाने के लिए अगर आप चाय पी रहे हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि 4 हर्बल चाय पीजिए। वो कौन कौन सी है इसके विषय में बात करेंगे, लेकिन अगर आपका पेट फूला हुआ है तो वो कम हो जाएगा, या यूं कहें कि पिचक जाएगा, या यूं कहें कि वेट लॉस होगा। जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। ये एक समस्या है, अब बात करते हैं इसी विषय में। पेट फूलने पर आराम के लिए आप पीजिए हर्बल टी। पेट फूलने की समस्या गर्मियों में बढ़ सकती है और मौसम बदलने के साथ ही लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं और इसकी वजह से पेट में गैस बनने लगती है और पेट फूलने लगता है। गर्मियों में बार बार डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं और इसकी वजह से पेट में गैस बनने लगती है और पेट फूलने लगता है। गर्मियों में बार बार ठंडा पानी पीने, हैवी मील खाने, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसी वजह से लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। पेट फूलने की समस्या से आराम पाने के लिए हर्बल टी आप पी सकते हैं। आइए जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। तो बात सामने आती है कैमोमाइल टी के विषय में बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कैमोमाइल के फूलों से तैयार होने वाली हर्बल टी इन्फ्लेमेशन कम करती है और स्ट्रेस से भी राहत दिलाती है। कैमोमाइल टी पीने से पेट की गैस कम होती है। इसी तरह पीरियड्स के दौरान होने वाले मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की समस्या और जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए भी कैमोमाइल की चाय लाभकारी मानी जाती है। सौंफ की चाय। गर्मियों में सौंफ का शरबत पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। ये शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। इसी तरह सौंफ के दानों को उबालकर बनाई जाने वाली चाय भी गर्मियों में डाइजेशन बूस्ट करने का काम करती है। ये चाय पीने से पेट में भारीपन, गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। अब बात करते हैं अजवाइन की चाय के विषय में। ये देसी मसाला गैस और अपच जैसी समस्याओं से आराम दिलाने का खास नुस्खा है। अजवाइन के बीजों को फाकने से अर्थात लेने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम होती है और ये खाने का फ्लेवर भी बढ़ाता है। अजवाइन के बीजों को रात भर पानी में भिगोकर रखें और अगले दिन इस पानी को अच्छी तरह से उबालें, थोड़ा सा काला नमक मिलाएं और इस चाय को छानकर पिएं। इस तरह आप स्वादानुसार शहद भी इस चाय में मिला सकते हैं। अदरक और शहद की चाय। जी हाँ, पेट की समस्याओं से आराम पाने के लिए अदरक यानी कि जिंजर का इस्तेमाल बहुत असरदार माना जाता है। ये पेट की समस्याओं को कम करने के लिए अदरक के साथ नींबू, शहद और हल्दी जैसी चीजों को मिलाकर हर्बल टी बनाई जाती है। अदरक की चाय पीने से डाइजेशन बेहतर बनता है और इससे पेट की गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: इस अभियान का नारा, टीबी संबंधित भेदभाव को मिटाओ, देश को टीबी मुक्त बनाओ। एक्टिव टीबी रोगी के करीबी संपर्क में आने से टीबी फैल सकता है, लेकिन नियमित उपचार शुरू होते ही टीबी रोगी से दूसरों में बीमारी का संक्रमण बंद हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ हाथ मिलाने या टीबी रोगी के साथ समय बिताने से टीबी नहीं फैलता। तो बताइए आप, जब टीबी की जांच और उपचार है आसान, तो डर या भेदभाव की कैसी बात। ना शर्माना, ना घबराना, टीबी की जांच करवाना। टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाकर आइए टीबी को जड़ से मिटाएं।
3: हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा।
2: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप,
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक,
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।
5: अरे सुनीता कैसे बा मुनिया?
6: नमस्ते आशा दीदी, सब ठीक बा?
5: साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
6: जी दीदी, जैसे रहुआ कहल रहनी हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम, जहाँ कहीं भी पानी जमा देखी नी ओके रा के तुरंत साफ करी नी, जैसे के पानी के ड्रम कूलर फ्रिज ट्रे सब के साफ सफाई करी ले हम,
7: और आस पास कहूँ भी टायर न...

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर हम एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत से ही लाभ गई। इसी के अंतर्गत एक खास बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। दोस्तों, जब भी हम सफर पर निकलते हैं या निकलने से पहले हर चीज की प्लानिंग करते हैं, नया स्कूटर या कार खरीदने से पहले हर विकल्प पर सोचते हैं, तो फिर अपने परिवार की योजना बनाने से पहले क्यों नहीं सोचते? ये तो जिंदगी भर का फैसला है। आपके परिवार को नियोजित रखने के लिए आपके पास गर्भ निरोधक के कई विकल्प हैं। जब आपके पास सही जानकारी होगी तभी आप अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर, अपने जीवन और अपने भविष्य के बारे में सही फैसला ले पाएंगे। तो झिझके नहीं, आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और अपने सभी गर्भ निरोधक विकल्प जाने। ये खास जानकारी सुनो शारदा 90.8 FM के माध्यम से स्मार्ट के सहयोग से सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत मैं आप तक पहुंचा रहा था। अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि डाइजेशन बढ़ाने के लिए अगर आप चाय पी रहे हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि 4 हर्बल चाय पीजिए। वो कौन कौन सी है इसके विषय में बात करेंगे, लेकिन अगर आपका पेट फूला हुआ है तो वो कम हो जाएगा, या यूं कहें कि पिचक जाएगा, या यूं कहें कि वेट लॉस होगा। जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। ये एक समस्या है, अब बात करते हैं इसी विषय में। पेट फूलने पर आराम के लिए आप पीजिए हर्बल टी। पेट फूलने की समस्या गर्मियों में बढ़ सकती है और मौसम बदलने के साथ ही लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं और इसकी वजह से पेट में गैस बनने लगती है और पेट फूलने लगता है। गर्मियों में बार बार ठंडा पानी पीने, हैवी मील खाने, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसी वजह से लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। पेट फूलने की समस्या से आराम पाने के लिए हर्बल टी आप पी सकते हैं। आइए जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। तो बात सामने आती है कैमोमाइल टी के विषय में बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कैमोमाइल के फूलों से तैयार होने वाली हर्बल टी इन्फ्लेमेशन कम करती है और स्ट्रेस से भी राहत दिलाती है। कैमोमाइल टी पीने से पेट की गैस कम होती है। इसी तरह पीरियड्स के दौरान होने वाले मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की समस्या और जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए भी कैमोमाइल की चाय लाभकारी मानी जाती है। सौंफ की चाय। गर्मियों में सौंफ का शरबत पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। ये शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। इसी तरह सौंफ के दानों को उबालकर बनाई जाने वाली चाय भी गर्मियों में डाइजेशन बूस्ट करने का काम करती है। ये चाय पीने से पेट में भारीपन, गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। अब बात करते हैं अजवाइन की चाय के विषय में। ये देसी मसाला गैस और अपच जैसी समस्याओं से आराम दिलाने का खास नुस्खा है। अजवाइन के बीजों को फाकने से अर्थात लेने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम होती है और ये खाने का फ्लेवर भी बढ़ाता है। अजवाइन के बीजों को रात भर पानी में भिगोकर रखें और अगले दिन इस पानी को अच्छी तरह से उबालें, थोड़ा सा काला नमक मिलाएं और इस चाय को छानकर पिएं। इस तरह आप स्वादानुसार शहद भी इस चाय में मिला सकते हैं। अदरक और शहद की चाय। जी हाँ, पेट की समस्याओं से आराम पाने के लिए अदरक यानी कि जिंजर का इस्तेमाल बहुत असरदार माना जाता है। ये पेट की समस्याओं को कम करने के लिए अदरक के साथ नींबू, शहद और हल्दी जैसी चीजों को मिलाकर हर्बल टी बनाई जाती है। अदरक की चाय पीने से डाइजेशन बेहतर बनता है और इससे पेट की गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: इस अभियान का नारा, टीबी संबंधित भेदभाव को मिटाओ, देश को टीबी मुक्त बनाओ। एक्टिव टीबी रोगी के करीबी संपर्क में आने से टीबी फैल सकता है, लेकिन नियमित उपचार शुरू होते ही टीबी रोगी से दूसरों में बीमारी का संक्रमण बंद हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ हाथ मिलाने या टीबी रोगी के साथ समय बिताने से टीबी नहीं फैलता। तो बताइए, जब टीबी की जांच और उपचार है आसान, तो डर या भेदभाव की कैसी बात। ना शर्माना, ना घबराना, टीबी की जांच करवाना। टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाकर आइए टीबी को जड़ से

हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: क्या आपको बुखार आ रहा है?
1: ये बुखार डेंगू, चिकनगुनिया या मलेरिया का हो सकता है।
0: बुखार होने पर फौरन नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर दिखाएं।
1: सिर, हाथ, पांव और पेट पर सामान्य पानी की पट्टी रखें।
0: बुखार के दौरान पानी, शिकंजी, ताजी फलों का रस और नारियल पानी जैसे तरल पदार्थों का ज्यादा सेवन करें।
1: हल्के सूती कपड़े पहने और कमरे को ठंडा रखें।
0: डॉक्टर की सलाह के बगैर कोई भी दवा का सेवन ना करें। झोला छाप चिकित्सकों से बचें।
1: संचारी रोग के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर
0: 1800-180-5145 पर कॉल कर सकते हैं।
1: याद रखना, बुखार में देरी
0: पड़ेगी भारी।
1: यूनिसेफ के सहयोग से सुरुशादा 90.8 FM द्वारा ये जानकारी जनहित में जारी।
2: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: सुनो शारदा 90.8 FM
1: Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा लर्निंग कोडिंग AI साइबर सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878 9377 0 सीट्स आर लिमिटेड हरी अप कहीं देर ना हो जाए।

0: बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: अच्छा सोचिए, जरा सी चोट लगे तो आप क्या करेंगे?
3: दवाई की दराज में से पट्टी निकाल के लगा लूंगी।
2: अच्छा, हल्का सा बुखार हो तो?
3: दवाई की दराज में से गोली निकाल के खा लूंगी।
2: और बच्चे को दस्त लगे तो? क्या हुआ, दवाई की दराज में जगह खत्म हो गई क्या?
4: दस्त के इलाज में देर हुई तो बच्चों के शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दवाई की दराज में ORS और जिंक भी रखिए और दस्त शुरू होते ही इलाज शुरू कीजिए। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जान।

0: जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा 90.8
1: FM। Beautiful track only on सुनो शारदा 90.8 FM। सौ शर्त मंजूर सिंगर्स पलक मुच्छल एंड मोहम्मद इरफान म्यूजिक एंड लिरिक्स बाय संजीव चतुर्वेदी लेबल टिप्स ऑफिशियल सो लेट्स लिसन टू इट ओनली ऑन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
1: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: मुझे भी तो मेहंदी लगा दे। देख लो, दो महीने के इलाज में इतना सुधार है तो अब तो मैंने दवा खानी भी बंद कर दी है।
2: टीबी की दवा तो 6 से 8 महीने लगातार चलती है। इसका मतलब कि आपने डॉट्स का कोर्स बीच में ही बंद कर दिया।
1: ये क्या, मेहंदी अधूरी क्यों छोड़ दी?
2: तुम डॉट्स का इलाज अधूरा छोड़ सकती हो और सोचती हो कि बात बन जाएगी। जानती हो ना, अधूरा इलाज यानी टीबी ला इलाज।
3: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़े। ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
2: भाभी, कल ही डॉट सेंटर चली जाना।
1: कल नहीं, अभी।
3: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभी

0: आइए जानते हैं माहवारी अनियमितताओं के बारे में। अगर आप गर्भवती नहीं हैं और आपकी माहवारी 3 या उससे अधिक महीने तक नहीं आती है,
1: अचानक से आपका मासिक धर्म अनियमित हो गया है,
0: आपकी माहवारी 7 दिनों से अधिक समय तक चलती है,
1: आपको हर घंटे या 2 घंटे पर पैड या टैम्पॉन बदलने की जरूरत पड़ती है,
0: माहवारी के दौरान आप बहुत अधिक दर्द का सामना करती हैं,
1: आपका मासिक चक्र न्यूनतम 21 दिन और अधिकतम 35 दिनों से अलग है,
0: आप माहवारी के दौरान स्पॉटिंग का अनुभव करती हैं,
1: आप माहवारी के दौरान अन्य लक्षणों जैसे सामान्य रक्त स्त्राव या बुखार का अनुभव करती हैं,
0: तो आपको उपचार के लिए फौरन नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करना चाहिए।
1: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: अरे हम बोल रहे हेलो कौन, अरे हम बोल रहे हेलो कौन, अरे हम बोल रहे हम बोल रहे हम बोल रहे हम बोल रहे हम बोल रहे
1: सोरो शारदा
2: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ।

तो हम उनको कैसे रोक सके। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें कहीं ना कहीं सुनने को समझने को मिल जाती है, लेकिन कुछ चुनिंदा बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा आगे चलकर आपका नाम रोशन करेगा, देश का भविष्य वो तय करेगा। जी हाँ, बात करते हैं आपका बेटा या बेटी को अगर कुछ ऐसे सबक सिखाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा एक संस्कारी बेटा या बेटी बनकर आगे बढ़ता रहेगा। जरूरी है कि उनकी गलतियों पर हमें पर्दा नहीं डालना है, जरूरी है कि उनकी गलतियों को सुधार में लाकर आगे बढ़ते हुए चले जाना है। बात करते हैं कुछ ऐसे ही विषय के विषय में। बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे इसका पता किसी को नहीं, लेकिन वो अच्छे इंसान बनेंगे या नहीं ये आप पर निर्भर करता है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होंगे। बच्चे भी वही आम की ही तरह होते हैं जिसको आपको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी आदतें नहीं सिखाएंगे तो आपके लिए बच्चों के बेहतर भविष्य को तय करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि शुरू से ही बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाएं। हालांकि मौजूदा वक्त में हम बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर उन पर हंसते हैं जो उन्हें आगे चलकर बिगाड़ने का काम करती हैं। आइए आपको बताते हैं कि बच्चों को सिखाई जाने वाली 5 ऐसी अच्छी आदतों के बारे में जो उन्हें अच्छा इंसान बनने में मदद करेंगी। बात करते हैं सबसे पहले ईमानदारी के विषय में। ईमानदारी एक ऐसा विषय है कि अगर आपके पास ये है तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता और इसकी जो खुशबू है वो चारों दिशाओं में फैलती है। जी हाँ, बच्चों को शुरू से ही ईमानदारी के रास्ते पर चलना सिखाना होगा और इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि बच्चा सच बोलने में कभी आपसे कतराएगा नहीं और दूसरा उसे अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ईमानदारी बच्चों में मासूमियत बरकरार रखने का काम करती है। आप बच्चों को झूठ बोलने के परिणामों के बारे में बताएं और उन्हें गलती स्वीकार करना सिखाएं। अच्छा स्वभाव यानी कि गुड मैनर्स टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को जल्द से जल्द अच्छा स्वभाव अपनाना सिखाना चाहिए। अच्छा स्वभाव आपके बच्चे का सोशल IQ तो बढ़ाता ही है, साथ ही उसे बेहतर तरीके से निखार कर सामने आने में भी मदद करता है। अच्छा स्वभाव उसे उसके जीवन में अच्छा इंसान बनने में भी मदद करता है। बात करते हैं हेल्दी फूड्स के विषय में। हेल्दी फूड्स का चुनाव करना ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, यानी हेल्दी फूड सिलेक्शन टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को हमेशा हेल्दी फूड्स का विकल्प चुनना सिखाना चाहिए। जब बच्चों को हेल्दी फूड्स के बारे में पता होगा तो अपने जीवन में हेल्दी रहना वो सीख पाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो करेंगे। हेल्दी फूड्स बच्चों के स्वास्थ्य को हेल्दी रखने की एक गारंटी है जिसे हर माता पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। बात करते हैं सम्मान की। सम्मान हर कोई चाहता है, लेकिन अगर आप किसी को सम्मान देते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपके सम्मान की बात है, यानी कि रेस्पेक्ट टू टीच टू किड्स। छोटे बड़ों का सम्मान करना हर किसी को आना चाहिए। ये एक ऐसा भाव है जो हर बच्चे में होना चाहिए, फिर चाहे वो बड़े हों या छोटे, सभी का आदर बहुत जरूरी है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए बच्चों को शुरू से ही आदर सम्मान करने का भाव सिखाना बहुत जरूरी है। बात करते हैं टाइम की, यानी कि टाइम मैनेजमेंट की। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि उन्हें अपना समय कब कहाँ खर्च करना है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता और उस समय को बर्बाद करना आपके लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: ओले ओले ओले और सुनो। हेलो, कौन?
2: नमस्कार, हम दस्त बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर, आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है
3: तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं,
2: जल्द मिलते हैं।
1: हेलो हेलो हेलो,
4: आ रहे हैं दस्त, दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट।
5: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: जिंदगी म्यूजिक प्रोड्यूस्ड एंड अरेंज्ड बाय रूहान मलिक, लिरिक्स बाय साकिब नवी, ओनली ऑन सुनो शारदा 90.8 FM।

सुनो शारदा 90.8 FM सुनो शारदा 90.8 FM। Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा लर्निंग कोडिंग AI साइबर सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937770 सीट्स आर लिमिटेड हरी अप कहीं देर ना हो जाए।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Film making एक creative field है, और यदि आप creative सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
6: The world is here.
5: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक। समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
1: शारदा। पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, I'm Ranvijay. आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हीरो मिले बिना जाएगा।
1: कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया।
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
4: बिल्कुल सोचा है पापा।
3: क्या सोचा है?
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
3: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया?
4: जी पापा।
3: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
4: हाँ पापा बिल्कुल।
5: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
2: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेंगी 10 से 4।
1: For more information, please call Dr. Ramneet 9878937700. Seats are limited. Hurry up, कहीं देर ना हो जाए।
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
1: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नवजात शिशु, लड़की हो या लड़का, उसकी एक समान देखभाल करें।
1: नवजात लड़की या लड़के में खतरे के लक्षण दिखते ही उसे बिना समय गवाए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या SNCU में ले जाएं।
0: एक वर्ष तक के सभी नवजात शिशु को स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या हो तो सरकारी अस्पताल में उपचार, दवाएं, सभी जांचें तथा जरूरत पड़ने पर रक्त, ये सभी सेवाएं निशुल्क दी जाती हैं।
1: और 102 एम्बुलेंस सेवा घर से अस्पताल और अस्पताल से वापस घर तक निशुल्क पहुंचाएगी।
0: जब होगी सही देखभाल तभी तो आएगी खुशियां बेमिसाल।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आशा या नर्स दीदी को संपर्क करें।
0: शिशु की सही देखभाल से
1: फर्क पड़ता है। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
2: नाम तो सुना ही होगा।
3: राम राम दोस्त राम, सत श्री अकाल। यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यह आवाज आपने सुनी ही होगी। मेरा नाम है गगन। सुबह से लेकर शाम तक मैं रहता हूँ आपके साथ, लेकिन एक ऐसी शख्सियत से आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ जिसका नाम अक्सर आपने सुना है, जिसकी आवाज से आपका दिन बन जाता है, या यूं कहें कि रातें बन जाती हैं। सो लिसनर्स हमारे साथ जुड़ रही हैं आरजे साइमा, रेडियो मिर्ची की बड़ी फेमस आरजे, पुरानी जींस लेकर आती हैं और रेडियो शो में पुरानी हिंदी फिल्मों के गानों के साथ साथ दिलचस्प किस्से और शायरियां सुनाती हैं। जब इनसे मुलाकात हो तो मौके पर चौका मारना चाहिए, और ऐसे मौके पर चौका मारा हमारी सहयोगी खुशबू ने। उनसे बात की एआई के विषय में। आइए, क्या बात हुई, सुनते हैं आरजे साइमा को खुशबू के साथ।
4: आज हमारे साथ खूबसूरत आवाज के साथ साथ एक ओपिनियन रखने वाली आरजे मौजूद है, आरजे साइमा, जिन्हें किसी पहचान की तो जरूरत नहीं है, लेकिन एआई के दौर में रेडियो किस तरह से बदल रहा है, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बदल रहा है रेडियो एआई के बाद, कह रहे खत्म हो जाएगा, जॉब चली जाएगी, बहुत सारी सवाल हैं, आप इसे कैसे देखती हैं?
5: मैं इसे देखती हूँ कि रेडियो बदल रहा है, हर दिन बदलता है, हर वक्त बदलता है, हर मोमेंट बदलता है, तो रेडियो भी बदलेगा, और उसके बदलने में कोई बुराई नहीं है, हम बेहतरी की तरफ बढ़े। इसका जो एक प्रॉमिस है, उसका जो एक वादा है, वो उससे कॉम्प्रोमाइज ना करें और उसमें हर वो नई चीज लाए जिससे जो सुनने वाला है वो मुतासर हो, वो उससे कनेक्ट करे। एआई एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हमारे रेडियो एक्सपीरियंस को बेहतर कैसे करेगा, और मुझे यकीन है कि ये बेहतर करने के लिए ही आया है।
4: मैम, दौर बदला है, वक्त बदला है, हम बदलने के लिए और अडॉप्शन की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से आपकी आवाज को अगर कोई बदल कर कुछ और पेश कर दे तो ये कितना खौफनाक है, और इसे कैसे देखते हैं?
5: हाँ, ये बहुत खौफनाक है, और ये एआई का एक फ्लिप साइड है जहाँ पे हमें एथिकल लॉज की जरूरत है, हमें रेगुलेशन की जरूरत है, हमें बहुत सारे कानून की जरूरत है, ताकि इसी का दुरुपयोग ना किया जा सके। कोई भी टेक्नोलॉजी दोनों चीज लेकर आती है, वो आपके लिए फायदेमंद भी होती है, वो आपके लिए नुकसानदेह भी बन सकती है। मेरी आवाज को इस्तेमाल करके कोई अगर नफरत की कोई बात कहे तो मुझे खुशी सिर्फ एक बात की होगी कि जो लोग मेरे बारे में जानते हैं उनको पता है कि ऐसी बात मैं कभी कर नहीं सकती, और मैं यहाँ हूँ उस बात को झुटलाने के लिए। लेकिन ये कानून आना बहुत जरूरी है कि कोई भी मुझसे बिना पूछे मेरी आवाज नहीं बन सकता और नहीं इस्तेमाल कर सकता।
4: आज के दौर को आप उस आवाज में क्या कहना चाहेंगी जहां पर एक स्टूडेंट आपको सुनता है, आपको एज ए इंस्पिरेशन देखता है, और रेडियो को, क्योंकि डिजिटल दौर में रेडियो को इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी लाइन ब्लर हो रही है, तो मैं चाहूंगी कि आप उन स्टूडेंट से कुछ कहें जिनसे वो ब्लर लाइन के बीच अच्छे से कनेक्ट कर सके।
5: एक इंसान को, यू नो, व्हाट डू वी लव, जिंदगी के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या है कि जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है, हमें नहीं पता कि अगले पल क्या होगा, एंड इससे हम इंटरेस्टेड रहते हैं, दिलचस्पी बनी रहती है। जो रेडियो मीडियम है ना, वो हमें बहुत आजाद करता है, एक तो वो दुनिया बनाने में जो हम बनाना चाहते हैं, उस चीज को देखने में और किस तरह से हमें देखना है, ये हमारे हमारे अंदर, ये हमारा राइट होता है। मैंने एक बात कही, अगर मैं सामने नहीं हूं तो आपने मेरे एक्सप्रेशंस तो नहीं देखे, लेकिन वो बात अब आप कैसे इमेजिन कर रहे हैं वो आपकी हो गई। तो रेडियो देने वाला मीडियम है, मैंने आपसे कोई बात अगर कही तो वो बात अब आपकी है, आप उसको कैसे सोचते हैं वो लिबर्टी आपके पास है, जो कि और मीडिया के पास नहीं है, वहां पे जो दिखता है वही है, आप बदल नहीं सकते।
4: बिल्कुल मैम, एक आखिरी सवाल आपसे है, एज अ रिसर्चर, कम्युनिटी रेडियो के अपने चैलेंजेस हैं, एज अ आरजे कैसे देखते हैं आप, क्योंकि बड़े चेहरे, बड़े नाम, कहानियां बदल जाती है, लेकिन कम्युनिटी, छोटा सा प्रदेश, उसकी चुनौतियां और उसकी सस्टेनेबिलिटी बदल जाती है, तो क्या कहेंगे इस पे? मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो रेडियो का असल फॉर्म ले, बिकॉज रेडियो इम्पैक्ट का मीडियम होना चाहिए और कम्युनिटी रेडियो के पास वो आजादी है कि वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। और आज के दौर में हमें छोटे छोटे हिस्सों में अपनी आवाज को एक बेहतर अंजाम के लिए इस्तेमाल करना है। सो कम्युनिटी रेडियो आज जितना रेलिवेंट और आज जितना जरूरी है उतना कभी भी नहीं था।
3: भाई बिल्कुल सही कहा आरजी साइमा ने कि जिस तरीके से सामुदायिक रेडियो स्टेशन आज रेलिवेंट है इतना पहले कभी नहीं था। सामुदायिक रेडियो स्टेशन आपकी आवाज है, जन जन की आवाज है और जन जन की आवाज को लाखों करोड़ों लोगों तक हम पहुंचा रहे होते हैं फ्रीक्वेंसी के माध्यम से, ऐप के माध्यम से। इसीलिए कहूंगा कि सुनो शारदा 90.8 एफएम के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। 01204060205 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मेल भी कर सकते हैं 90.8fm@sharda.ac.in पर। और अगर आपको लगता है कि एक मुलाकात जरूरी है तो शारदा विश्वविद्यालय के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं इन्हीं नंबर पर कि ये चर्चा आपको कैसी लगी। आरजे साइमा के साथ जुड़ी रही हमारी खुशबू। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: Hi everyone, this is Dania Joshi and you're listening to Suno Sharda 90.8 FM.
6: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। एचआईवी और टीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक एचआईवी रोगी को टीबी होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर एचआईवी संक्रमित व्यक्ति को टीबी होता है तो टीबी का रोग एचआईवी को एड्स में तेजी से बदल देता है। टीबी के इलाज का कोर्स पूरा करने पर एचआईवी रोगी टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूं कि हर एचआईवी मरीज तुरंत टीबी की जांच कराएं और सभी टीबी मरीज भी एचआईवी की जांच कराएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
5: The world is here.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा 90.8
1: FM। 2018 में यहाँ पे JEE के 22 केसेस मिले थे जिसमें दो लोगों की डेथ भी हो गई थी।
2: हमारे गांव देहात के जो भी केस होते थे यहाँ पे हमें हर केस को जो है जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज रेफर करना पड़ता था, लेकिन दस्तक अभियान के थ्रू जो है काफ़ी हद तक जो है केस कम करने में सफलता मिली है। इसके लिए सबसे पहले जिले स्तर पे मीटिंग की गई, फिर उसके आधार पे हम लोगों ने जो है एक माइक्रो प्लान बनाया।
1: तो आप लोग अपने अपने माइक्रो प्लान यहाँ पे शेयर कर दीजिए ताकि इंटर डिपार्टमेंटल सबको मिल जाए। ठीक है, तो आंगनवाड़ी और आशा साथ में ही विजिट करेंगे डोर टू डोर।
3: डोर बाय डोर टू जाते हैं और हर घर हम ये सूचना देते हैं कि साफ सफाई के बाद आप हमेशा मच्छरदानी का प्रयोग करें। बच्चों को और अपने खुद फूल आस्तीन का कपड़ा पहने, बच्चों को मोजा और अपने मोजा पहने रहें, क्योंकि जो मच्छर लगते हैं उससे हमारे बच्चों को और हमको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और वही बीमारी का कारण हो सकता है।
4: उबालने के लिए बताते हैं और पानी करछिल से निकालें, उसमें हाथ न डालें, हाथ धोल करके पानी निकालें।
1: कोविड में भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा हमारा कैंपेन। हमारा कोई भी हेल्थ वर्कर डोर टू डोर सर्वे कर रहा है तो वो ये देख रहा है कि किसी को फीवर है या क्या सिम्टम्स हैं, तो हम उसका टेस्ट करा सकते हैं। अगर कोविड रिलेटेड पेशेंट है तो उसे भी आइडेंटिफाई कर सके, JEE से रिलेटेड है तो उसे भी आइडेंटिफाई कर सके टाइम पर। अभी दस्तक अभियान के तहत जो है हमारी ग्राम पंचायतों में सफाई कर्मी नाली की सफाई कर रहे हैं, झाड़ी काटने की एक्टिविटीज चल रही हैं, एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है।
2: ये बहुत ही अच्छी योजना रही माननीय मुख्यमंत्री जी का, इसके माध्यम से हम लोग JEE केस कम करने में और उसकी मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी कम करने में बहुत ही उपयोगी साबित हुआ। ये
1: हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी कोऑर्डिनेट किया है, वो वहाँ पर अपने स्कूल्स में टीचर्स के माध्यम से बच्चों के पेरेंट्स को और बच्चों को दस्तक कैंपेन के बारे में जागरूक कर रहे हैं।
3: बच्चे स्वस्थ हो रहे हैं क्योंकि उनके माता पिता सब लोग जागरूक हो रहे हैं।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो

0: तब मैं जाऊंगी उनके पास जो नहीं है तारा की तरह तैयार।
1: टीम तारा, मच्छर आ रहे हैं, क्या तुम सब हो तैयार?

0: अगली बार हम सीखेंगे कि क्या करना है अगर आ जाए बुखार।
1: तब तक रहो तारा की तरह तैयार।
0: बाय बाय।
2: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हवा में फैलने वाला रोग है जो बिना मुंह ढके खांसने से और इधर उधर बलगम थूकने से फैलता है। आप बलगम को कागज के टुकड़े में थूक कर जला सकते हैं या एक राख भरे मटके में थूक कर जमीन में दबा भी सकते हैं। इससे रोगाणु फैलने का कोई डर नहीं होता। अपनी खिड़कियां खुली रखें जिससे खूब सारी रोशनी और शुद्ध हवा अंदर आए। ऐसे वातावरण में टीबी रोगाणु ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते। और हाँ, अपने इलाज का कोर्स समाप्त जरूर कीजिए। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
5: बिल्कुल सोचा है पापा।
4: क्या सोचा है?
5: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
6: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
5: जी पापा।
6: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
5: हाँ पापा बिल्कुल।
7: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
8: So where are you? The world is here at Sharda University.
9: Film making एक creative field है, और यदि आप creative सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
10: The world is here।